सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: जिनेंद्र सोनी जी।
2: राधे राधे।
1: मर्जी आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मर्जी शाकाहार मेरे संस्कारों में है। मर्जी पर जब मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो तर्क कुतर्क करते हैं। मर्जी ऐसे में हम उनको
3: समय समझाएगा, उनको समय समझाएगा। जिनको संतों के वचन और सात्विक पुरुषों के वचन नहीं समझ में आते कि भाई मुर्गा बकरा इनमें सब में जीव है, आप इनको काटते हो इनको खाते हो, बोले मैं काटता नहीं, मैं दुकान से ले आता हूं, तो अगर आप ना खाओ तो वहां कटना बंद हो जाए ना, तो काटने का कर्ता प्रेरक भोक्ता इन सबको फल एक ही मिलता है, तो आप ना कहीं ना कहीं हिंसा में है और इसका जब दंड आएगा तो आपको भोगना पड़ेगा। देखो ऐसे ऐसे निर्दयी लोग हैं जो जिंदा पशुओं को जला करके उनका मांस खाते हैं।
1: कहते हैं दूसरे देश तो बहुत उन्नतिशील हैं।
3: हाँ तो क्या भोग मांस खाना शराब पीना इसको उन्नति समझते हो? अगर उन्नति समझते हो तो भ्रष्ट जीव हो तुम। क्या रुपया उन्नति है? आचरण पवित्र उन्नति है। यहाँ एक बार जिस स्त्री ने पुरुष का हाथ पकड़ लिया आजीवन निर्वाह किया, वह आज इसके साथ कल उसके साथ पर हमारे देश का सदैव अनुकरण करते रहे अन्य देश वाले। आज हम गिर रहे हैं इसलिए कि हम अन्य देशों का अनुकरण करें। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये हमारे देश का नहीं, हमारे शास्त्रों का नहीं है, ये अन्य देशों से आया हुआ आचरण है जिसको आज स्वीकृति मिल गई है। अब देखो एक लड़की एक बॉयफ्रेंड से 10 दिन बाद ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड 20 दिन बाद उससे ब्रेकअप, तीसरा, इसको क्या बोलोगे आप? व्यभिचार प्रवृत्ति बोली जाएगी ना। अरे हम कह रहे हैं किसी लड़की को अगर ऐसा है तो एक बच्चे को वरण कर लो और उसके माता पिता से मिलके ब्याह करो, गृहस्थी में चले जाओ, कोई परेशानी नहीं। हम और पक्ष पे नहीं है, एक पक्ष पे दोस्ती करो, व्यभिचार मत करो, और जब तुम्हारी दोस्ती पक्की हो जाए तो फिर गृहस्थ धर्म में चले जाओ। फिर जैसे गृहस्थ का प्रयोग होता है, एक आज हमारा जो गृहस्थ धर्म है बहुत संकट में है। मानो कई जगह व्यभिचार करने वाली लड़की, कई जगह व्यभिचार करने वाला लड़का, ये जब पाणी ग्रहण करेंगे तो मर्यादा में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पहले ही अपनी आदतें बिगाड़ चुके हैं। अब इनकी गृहस्थी कैसी रहेगी? पुरुष देख रहा है कि वो उनसे बात कर रहे हैं, वो देख रहा है उनके साथ जा रहे हैं, तो संबंध विच्छेद, संबंध का मिठास कहाँ रह गया, संबंध का भरोसा कहाँ रह गया, संबंध में विश्वास कहाँ रह गया, तो जीवन किस काम का? तो ये विदेश कोई उन्नतिशील नहीं है। आप क्या उन्नति मानते हो विदेश में? किस बात की उन्नति मानते हो? आनंद परमानंद कहाँ है? अगर यही उन्नति है तो हमारे पास विदेशी लोग आकर के क्यों बैठते हैं? क्यों जानना चाहते हैं कि तुम किस आनंद में हो? अरे तुम भारतवासी हो, अपने गर्व में रहो, अपने धर्म में रहो, अपनी महिमा में रहो, दूसरों की बातें मत देखो। ये संसारी पुरुष हैं, ये क्या जाने, केवल इतनी उन्नति है। अगर इतनी उन्नति है तो अपने भारत में पैसे की कमी नहीं है, एक से एक धनी है, तो क्या वो शांत है? अगर वो शांत है तो संतों के चरणों में क्यों जाते हैं? दान पुण्य धर्मात्मा आप क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि उसमें शांति नहीं है। शांति है दूसरों को सुख देने में, शांति है धर्म में चलने में, शांति है भगवान में। ये तो दूसरे केवल भोग योनि समझो, अन्य देशों में भोग योनि। उन्नति का मतलब क्या समझ लिया? उन्नति का मतलब रुपया होना, भोग भोगना, इतनी केवल उन्नति मानी जाती है क्या? ये तो नहीं।
2: महाराज जी मैं अध्यापक हूँ तो मेरे सामने इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन आती है। वहां पर जब इस तरह की बात की जाती है तो कुतर्क क्या आते हैं कि वो सामने से हमने उन्नति कर ली, हम बाहर जा रहे हैं और समाज में इतना गिरता जा रहा है कि पैसे को ही प्राथमिकता मान ली गई।
3: नहीं, वो हम कल भी कहा था एकांतिक में कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। तो अब क्या है, उल्टा है कि नहीं है? हाँ, तो अब ये बुद्धि भ्रष्ट हो रही है,
2: युद्ध की भी हो रही है।
3: हाँ, अब आप देखो बूढ़े माता पिता जिनको सुविधा चाहिए, जिनको तुम्हारा प्यार चाहिए, वो घर में सड़ रहे और तुम आनंद ले रहे हो देश विदेश में अपने कर्तव्यों का त्याग करके। तो विदेशी पद्धतियां हमारे देश की नहीं, हमारा धर्म प्रधान देश है। ये मूर्ख लोग हैं जो दूसरे का अनुकरण करके उनकी उन्नति मानते हो, अपनी अवन्नति मानते हैं। अरे हम नमक रोटी खाते हैं लेकिन धर्म से जीते हैं। हम तो गए नहीं लेकिन जैसा सुना है।
4: नहीं नहीं ऐसी है महाराज जी, मैं 25 साल से बाहर रह रहा हूँ लेकिन जो आप बोल रहे हो वो ऐसा ही है।
3: ऐसा ही है हाँ, क्योंकि हमने सुना है, हम कभी गए तो है नहीं, हमें पता नहीं, तो फिर क्या मतलब, फिर क्या, तो क्या आप बताओ, देखो जैसे आप विदेश में रहते हो, क्या अपने देश का प्यार कहीं आपको मिलेगा? आप विचार करो, माँ से प्यार, भाई से प्यार, बहन से प्यार, पत्नी से प्यार, जो अपने देश की, अपने देश की एक मतलब रहनी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। भला ऐसा कोई जीवन जीवन होता तुम जिसे उन्नति मान रहे हो, हमारे लिए वो तिरस्कार के योग्य है, हमारे लिए वो निंदनीय विषय है जिसे तुम उन्नति मान रहे हो। यही तो नौजवानों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वही आचरण लाना चाहते हैं अपने देश में। तो नई पीढ़ी जो गिरती जा रही है, उसका कारण क्या है? कितने बच्चे डिप्रेशन में हो रहे हैं,
2: बहुत बच्चे
3: हमारे सामने नौजवान आते हैं जो डिप्रेशन में हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? यही व्यभिचार, यही व्यसन, यही गंदा चिंतन। नहीं तो आप देखो, हम गांव में पैदा हुए हैं, पचासों गांव में ऐसे जो कुश्ती लड़ने वाले, पचासों गांव में स्वस्थ, कभी डिप्रेशन शब्द नहीं सुना, कभी डिवोर्स शब्द नहीं सुना, कभी हार्ट फेल शब्द नहीं सुना, मेहनत किए और आज ब्याह प्रेम संबंध होते हैं और साल नहीं बीतता और डिवोर्स हो जाता है। ये क्या है, ये क्या चरित्र है?
2: महाराज जी, इसको सुधारने के लिए आप कुछ मुझे गाइड करें।
3: हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि अपने शास्त्रों को स्वाध्याय करके, जब तक अपने धर्म की गरिमा हमारे बच्चों के दिमाग में नहीं आएगी, तब तक आधुनिक पढ़ाई विदेशों की महिमा को समझेगा, आधुनिक पढ़ाई। और अगर अध्यात्म की बात आवे तो समझ में आ जाए। अगर हमारी बच्चियां सावित्री जी, अनसुईया जी, इनके चरित्रों को पढ़े तो समझे, हमारे बच्चे धर्म से चलें, हरिश्चंद आदि के पावन चरित्रों को पढ़ें, धर्म से जो अपने जीवन व्यतीत करने वाले रहे। आप सोचो, एक कबूतर की रक्षा के लिए महाराज शिवी ने अपने शरीर को काट के रख दिया, और यहाँ कबूतर और मुर्गा मुर्गी के लिए कैसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं। एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर को काट दिया महाराज शिवी ने, और तराजू पे रख दिया, उसको हानि नहीं होने दी कबूतर की, और आप जीवों का नाश कर रहे हो, कह रहे हो। कुछ लोग तर्क रखते हैं कि अगर हम मुर्गा मुर्गी नहीं खाएंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे जगत में, फिर इनका विनाश कैसे हो? तो विनाश का सेवा तो भगवान शंकर को है, पालन की सेवा हरि को है, और सृष्टि रचने की सेवा भगवान ब्रह्मा जी को है। तो ये मूर्ख लोग जानते नहीं। अगर नाम जप करें और 10 मिनट सत्संग को सुने या शास्त्र स्वाध्याय करें तो जरूर बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी। ब्रह्मचर्य की कमी के कारण हमारी बुद्धि रजोगुणात्मक होती चली जाती है और वो व्यसनों में उतर जाती है, और व्यसन और ब्रह्मचर्यहीनता ये धर्म रहित कर देते हैं। पर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे राष्ट्र के भविष्य के सुधारने वाले हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र के भविष्य बच्चे हैं। इन्हीं में कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, अगर ये चरित्रवान होंगे, धर्मवान होंगे, तो किसी भी पद में जाएंगे तो हमारे राष्ट्र की शोभा होंगे, राष्ट्र की सुरक्षा होंगे। और अगर भ्रष्ट पदाधिकारी हुआ तो नष्ट करने वाला ही होता है। तो बच्चे स्कूल से ही चरित्रवान बनते हैं, तो आप प्रथम गुरु हैं जो उनके चरित्र को प्रकाशित करने वाले हैं। तो आप प्रयास रखिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए और अध्यात्म को जोड़िए आधुनिक पढ़ाई के साथ। यदि अध्यात्म जुड़ेगा तो सुधार होगा, केवल आध्यात्मिक नहीं चल पाएगा क्योंकि उनको आधुनिकता की जरूरत है, और केवल आधुनिकता नहीं चल पाएगी क्योंकि अध्यात्म के बिना उसको सही ढंग, सही मार्ग नहीं मिल पाएगा। पूरा अध्यात्म ही नहीं चला पाएंगे, वो तो हम लोगों का विषय है केवल अध्यात्म में चलना। आधुनिक और अध्यात्म दोनों मिलके चलें तो बहुत समाज की उन्नति हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी,
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री ओपीडी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तो भौजी, आज सुबह ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
0: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065775।
13: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
14: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
15: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
16: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
17: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
14: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 8794-18744।
18: श्रोतागण प्रणाम, सुप्रभात। रोज की तरह आज भी राउर रेडियो दोस्त दीपाली हाजिर बड़ी घरेलू नुस्खा के सिलसिला लेके, कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल में। ये नुस्खा से राउर स्वास्थ्य होई बढ़िया और रहम रहुआ तंदुरुस्त। तो चली आज के ये घरेलू नुस्खा के सिलसिला शुरू करी हम। आप बताई कुछ उपयोगी नुस्खा। दोस्त लोग, आज हम बतावे जात मानी सबसे पहले सौंफ के बारे में। दोस्त लोग, सौंफ के गुण ई होला कि ई आयुर्वेद में सौंफ के लघु, हृदय खातिर हितकारी, सिनग्ध, रुचिकारक, विपाक में चरपरी, स्वाद में मधुर, अग्नि के प्रदीपन करे वाला, गर्भ स्थापन करे वाला, वात रोग और ज्वर नाशक, कफ दूर करे वाला मानल गइल बा।

है बावासीर, रक्त पीत और मोटापा में भी लाभकारी होला। मुख्य रूप से सौंफ के कार्य पाचन संस्थान होला। ई मूत्र के बाहर निकाले में मदद करेला। सौंफ ग्राही और अनुलोमक होला। फेफड़ा और गुर्दा के रोग में हितकारी होला। मूत्र में व्याप्त गर्मी शांत करेला। यूनानी मतानुसार सौंफ आंत के गुदा में फसल मल के कड़ा टुकड़ा के तोड़ेला, पेट के वायु निकालेला और खूब डकार लागेला। पेट में जमा होकर दूषित और चिकन पदार्थ के नाश करेला। प्रसूता महिला के स्तन में दूध बढ़ावेला। ई दस्त बंद करेला और ई कब्ज पैदा करेला यदि भून के एकर सेवन कइल जाए तो। यदि एकरा के पीस के पेट पर लेप कइल जाए तो पेट के संचित वायु निकल जाए। ई कई दवा के साथ अनुपान के रूप में भी लिहल जाला। और जौन दवा स्वादहीन होला ओकर ई स्वाद बढ़ावेला। तो आई जानल जाओ सौंफ के रोग उपचार के बारे में। पेट के भारीपन और कब्ज दूर करे खातिर एक भाग सौंफ के चूर्ण में 3 गुना गुलाब के गुलकंद मिला के रोजाना सुबह शाम 1-1 चम्मच के मात्रा में गरम जल या

पेट के भारीपन मिटावे के होके त सौंफ के योगर्ट करके एगो हथेली भर रोजाना सुबह शाम ले। अतिसार दूर करे खातिर थोड़ा सा सौंफ के तवा पर भून के हल्का लाल या भूरा रंग होके तक सेकी, फिर ओइमे बराबर के मात्रा में कच्चा सौंफ मिला के ओइमे मिश्री भी मिलाई। आ ये सब के बारीक पीस के या बिना पीसल होकर एक दो चम्मच के मात्रा में गाय के लस्सी के साथ दिन में 3 बार सेवन करी, ऐसे अतिसार दूर हुई। पेट के दर्द और ज्वर में 1 सिर पानी में 5 से 10 ग्राम सौंफ योगर्ट करके डाली। और औटाई जब पानी आधा बाकी रह जाए तो ओके छान के ओमे 5-10 ग्राम मिश्री मिला के 2-3 चम्मच के मात्रा में रोजाना दी। मूत्राशय और वात दोष के निवारण में आयुर्वेद में स्त्राव या दोष के अवरोध कई रोग के कारण मानल गई बा। इस प्रकार की स्थिति से छुटकारा पावे खातिर सौंफ के अर्क 4 से 8 चम्मच की मात्रा में ली। एके ई सब अंग से संबंधित अनेक रोग में लाभ हुई और दोष भी समाप्त हो जाई। कीड़ा खातिर ई हुकवर्म दवा बा। ई कीड़ा छोटा आकार के और सूत के समान होला। ई जीजुनम के शलेष्मिक कला में चिपकल होला। रोगी के खून पिएला, एके कारण पैर में सूजन, कमजोरी, पीलापन, कभी दस्त, कभी कब्ज तथा पेट में अफरा आदि रोग के लक्षण पैदा हो जाला। सौंफ के तेल के 5 से 10 बूंद और वयस्क के 30 से 60 बूंद शक्कर के साथ देवे से उक्त सब उपद्रव में लाभ पहुँचेला। ये प्रयोग 3 से 4 दिन तक करी और बाद में 5 से 15 मिलीलीटर तेल पिला दी। ऐसन करे से हुकवर्म जिंदा या मुर्दा शौच के जरिए बाहर निकल जाए। दिन के बाद कीड़ा पुनः पैदा हो जाला। यही से 45 दिन के अंतराल पर यह प्रयोग आवश्यकता पड़े पर दोहरावल भी जा सकेला। साथ ही व्यक्तित्व स्वच्छता के भी ध्यान रखी। नेत्र रोग में सौंफ कमजोर नजर, दुखद और लाल आंख और सूजन खातिर लाभकारी है। पत्ता के उबाल के ओ जल के ठंडा कर ली और ई जल से आंख धोई, ऐसन करे से नेत्र रोग में लाभ हुई। श्रोता लोग, अबे हमनी के जननी हसन सौंफ के बारे में, तो अब चली जान लिहल जाओ शंख पुष्पी के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर में सुबह शाम 2-2 चम्मच के मात्रा में शंखपुष्पी के पंचांग के काढ़ा कुछ समय तक लगातार सेवन करे से उच्च रक्तचाप सामान्य हो जाए। पागलपन में 4 चम्मच के मात्रा में कुछ समय तक रोजाना शंखपुष्पी के पंचांग के रस के सेवन करी, तो ऐसे पागलपन की शिकायत दूर हुई।

अनुसार यानी 4 चम्मच के मात्रा में नियमित रूप से सेवन करे से लाभ हुई। गला के बैठे पे शंख पुष्पी के ताजा पत्ता के रस चूसे से स्वर की गुणवत्ता में सुधार हुई और बैठल गला ठीक हो जाई। स्मरण शक्ति बढ़ावे खातिर शंख पुष्पी के पंचांग, गिलोय के सत्व, वायविडिंग, कुठ, वच, शतावरी, अपमार्ग के जड़ और हरड़, सबके बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बनाई। आ 1 चम्मच के मात्रा में सुबह शाम ये चूर्ण के सेवन गाय के दूध के साथ करी। गाय के दूध के साथ करे पर स्मरण शक्ति बढ़ेला। जे लोग दिमागी काम अधिक करेला वो लोग खातिर ये चूर्ण बहुत लाभकारी होला।

0: कौनो भी तरल पदार्थ के सेवन न करी। सुबह शाम शंख पुष्पी के पंचांग के आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ मिला के बच्चा के दे। व्यस्क खातिर ई मात्रा दुगुना कर दी, परंतु 4 से 8 सप्ताह तक ई प्रयोग अवश्य जारी रखी। दोस्त लोग, अब घड़ी के सुई ई कर रहल बा इशारा कि अब समय हो गइल बा ई कार्यक्रम से हमरा विदा लेवे के। तहसी खुशी के साथ आपन दोस्त दीपाली के दिन जाए के अनुमति आ रखी रहुआ आपन सेहत के ख्याल आजमाई ई सब नुस्खा के। नमस्कार।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। कल के एपिसोड में आपने हमारे साथ सुना शिव महाराज मीठी बोली सिखाता है, शिव प्यार सिखाता है। अब आगे
10: लिफ्ट। ओह गॉड, लिफ्ट तो दिलवा दो। लिफ्ट
11: कहां तक जाना है?
10: कहीं तक भी। एक काम करो, जहां तक तुम जा रहे हो वहीं तक छोड़ दो।
11: चलो ये भी ठीक है। हाय, आई एम नील। और आप हैं?
10: हाय, आई एम हर्षित। एक बात बताओ।
11: हाँ पूछो।
10: तुम भगवान के भेजे हुए कोई फरिश्ते हो क्या?
11: हाँ शायद, पर क्यों?
10: नहीं, इस सुनसान सड़क पर पिछले 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि कोई लिफ्ट दे दे, पर यहाँ तो चिड़िया भी नहीं उड़ रही। तुम यहाँ कैसे आ गए और एक बार में मुझे लिफ्ट भी दे दी?
11: मैं ऑफ बीट डेस्टिनेशन ट्रैवल करता हूँ, इसीलिए इस तरफ आ गया था। पर तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
10: इट्स अ कोइंसिडेंस, बट मैं भी ऑफ बीट ट्रैवलर ही हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए, रास्ते में कंपनी भी मिल जाएगी।
11: हाँ, अब सोलो ट्रैवल करते हो?
10: नहीं यार, दोस्तों के साथ ही करता हूँ या फिर ग्रुप के साथ। बट
11: अरे एक मिनट, हाँ यहाँ शिवजी का एक मंदिर है, डू यू माइंड अगर 2 मिनट हम?
10: नो प्रॉब्लम यार, चलो मैं भी चलता हूँ।
11: सॉरी मैंने तुम्हें बीच में रोक दिया था। तुम कुछ बता रहे थे, ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हो लेकिन?
10: हाँ, अरे मैं बस ये कह रहा था कि इस बार अकेले आ गया हूँ, घर वाले शादी कराने के लिए पीछे पड़े थे।
11: अच्छा, और तुम नहीं करना चाहते?
10: बिल्कुल नहीं, शादी करके जिंदगी बर्बाद थोड़ी करनी है।
11: अच्छा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शादी करके जिंदगी बर्बाद हो जाएगी?
10: देखो यार, अभी कितना अच्छा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, जब मर्जी काम किया, जब मर्जी ट्रैवल किया।
11: तो ये सब तो तुम शादी के बाद भी कर सकते हो?
10: नहीं यार, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए ना लाइफ में।
11: ओ, तो ये बात है।
10: यस डूड, ये सब छोड़ो, तुम बताओ, ये तुम शिव जी के भक्त हो?
11: हाँ यही समझ लो, कुछ ऐसा ही है।
10: अब देखो शिव जी को ही देख लो, लगता है मूर्ति उनकी शादी से पहले का डिपिक्शन है, कितने खुश लग रहे हैं।
11: अरे नहीं, पर एक वक्त था जब शिव जी भी तुम्हारी तरह सोचते थे। शिव तो महायोगी थे, ध्यान साधना योग बस इन्हीं सब में डूबे रहते थे, सांसारिक बंधनों के बारे में कहां ज्ञान था उन्हें। और फिर देवी माँ सती के रूप में इस धरती पर आई, ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष की पुत्री के स्वरूप में जन्मी सती। वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से अलग थी, जब बाकी सब खेल कूद में मग्न रहते थे, सती शिव की कहानियों में और फिर उनकी साधना में डूबी रहती थी।
12: सती, सती तुम कहाँ हो?
13: प्रसूति, सती कहीं दिखाई नहीं दे रही, उसकी सभी सहेलियां तो यहीं बगीचे में खेल रही हैं। सती कहाँ है?
14: वो नारद मुनि के साथ कहानियां सुनने में मग्न है।
13: हमारी पुत्री कितनी शीघ्र इतनी बड़ी हो गई, कुछ पता ही नहीं चला, क्यों प्रसूति?
14: सच स्वामी, समय जैसे उड़ सा गया हो।
13: हमारी सती बहुत सुलझी हुई है प्रसूति, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब हम उसके लिए एक योग्य वर ढूंढ लें, जो उसी की तरह सुलझा हुआ हो।
15: नारायण नारायण।
14: अरे नारद मुनि, ब्रह्मदेव आप यहाँ, प्रणाम।
13: प्रणाम पिताश्री, अच्छा हुआ आप आ गए, आपकी पौत्री को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। सती, सती।
14: स्वामी वो शिव की साधना में बैठी है।
16: पुत्र, हम स्वयं चलते हैं सती के पास उसे आशीर्वाद देने।

0: सती
1: प्रणाम पिताश्री, प्रणाम ब्रह्मदेव।
0: सदा प्रसन्न रहो सती, तुम्हें देखकर हृदय प्रसन्न हो उठता है। तुम बालपन से ही इतनी सुलझी हुई रही हो, याद है मुझे जब तुम्हारी उम्र के युवा युवती खेल कूद में व्यस्त रहते थे, तब तुम कैसे महादेव की साधना में डूबी रहती थी। किंतु आज मैं तुम्हें ज्ञात कराने आया हूँ कि सती, शीघ्र ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम चाहो तो महादेव से तुम्हारा विवाह हो सकता है, परंतु इसके लिए तुम्हें कठोर साधना करनी होगी। जाओ पुत्री, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ, महादेव को अपनी साधना से प्रसन्न करो।
2: अरे सती क्या हुआ, लगता है शर्मा आ गई।
3: पर पिताजी, सती शिव की साधना में ही डूबी रहती है, यह विषय चिंता का है, और आप हैं कि उसे और कठोर साधना में धकेल रहे हैं।
0: चिंता का विषय, ये तो सौभाग्य है पुत्र। जब सती शिव की ऐसी साधना करेगी, तभी तो उनसे मिल पाएगी।
4: ब्रह्मदेव के कहने पर सती अपना राजकाज छोड़कर कठोर तपस्या करने लगी। ऐसे सालों बीत गए, आंधी तूफान गर्मी सर्दी भूख प्यास के मायने ही खत्म हो गए सती के लिए। वो तो बस तपस्या कर रही थी, शिव की तपस्या।
0: मैं बहुत चिंतित हूँ विष्णुदेव।
2: क्या हुआ ब्रह्मदेव?
0: मेरी पौत्री सती महादेव को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास कर रही है, परंतु महादेव ने एक बार भी उस पर अपनी कृपा नहीं बरसाई।
2: मैं आपकी चिंता समझता हूँ, आप परेशान ना हो। एक उपाय है, क्यों ना हम स्वयं कैलाश जाकर शिवजी को समझाने का प्रयास करें।
0: अवश्य।

0: ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, आप दोनों यहाँ एक साथ? कोई विशेष कारण?
1: महादेव, हम एक प्रस्ताव लेकर आए हैं।
0: प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव?
2: विवाह का प्रस्ताव महादेव। हमें लगता है आपको विवाह के बारे में विचार करना चाहिए।
0: विवाह? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि मैं एक योगी हूं? मेरे जीवन में योग का स्थान कोई स्त्री नहीं ले सकती, और फिर मेरे विवाह योग्य स्त्री अब तक जन्मी कहां है? मेरी अर्धांगिनी कोई सामान्य स्त्री नहीं हो सकती। यदि मैं योगी हूं, उसे भी योगिनी बनना होगा। उसे मेरे जीवन का एक समान भागीदारी बनना होगा। है ऐसी कोई स्त्री?
2: है महादेव, ऐसी स्त्री है। दक्षराज की पुत्री, मेरी पौत्री है महादेव। उसका नाम सती है। वो आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती है। वो आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है। वो बालपन से अपने सारे सुख त्याग कर बस आपकी तपस्या में लगी हुई है। राजकाज, सुख सुविधाएं, भूख प्यास सब त्याग दिया है उसने।
0: ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं इस विषय पर विचार करूंगा, लेकिन आप दोनों मुझ पर दबाव ना बनाएं।
2: धन्यवाद महादेव।
3: ये कहकर ब्रह्मा और विष्णु वहां से चले गए और शिव को सोच में डाल गए। शिव छुप छुप कर सती को तपस्या में बैठे देखने जाने लगे।

0: कितनी कोमल लग रही है और मेरे लिए ऐसी निष्ठा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: ये कैसी स्त्री है, ये तो योगिनी है, महायोगिनी।
1: ओम नमः शिवाय।
0: ऐसी योगिनी को मैं बिना वरदान दिए कैसे जा सकता हूँ? सती, अपनी आंखें खोलो सती।
2: ईश्वर, क्या ये सत्य है? ये आप हैं? मैं धन्य हो गई महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई महादेव।
0: तुमने तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है सती, मांगो जो वरदान चाहिए मांगो।
2: मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ ईश्वर, मैंने तो बालपन से आप ही की साधना की है, नारद मुनि से आपकी कहानियाँ सुनी है, आप तो सर्व ज्ञाता है, आप सब जानते हैं, मैं आपसे क्या मांगू?
0: सती, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न और चकित हूँ। अपना राज काज छोड़कर तुमने साधना में अब तक अपना जीवन व्यतीत किया है, तुम महायोगिनी हो, तुम कुछ मेरी ही जैसी हो। निडर कहो, क्या चाहती हो तुम?
2: हे ईश्वर, मुझे तो अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरी और आपकी तुलना ही क्या है स्वामी, मैं तो बस एक लालची मनुष्य हूँ, अपने मुंह से कह भी नहीं सकती कि मुझे आपसे क्या चाहिए।
0: मैं जानता हूँ सती, इसलिए तुमसे भी पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी?
3: What? शिव मान गए?
4: क्यों ना मानते, शिव तो ये जानते ही हैं कि सृष्टि संतुलित रखने के लिए उन्हें देवी माँ यानी सती का साथ जरूरी था। सृष्टि का अगर कोई परम पिता है तो माता भी तो होगी, और फिर सती उन्हीं की तरह तो थी।
3: हाँ, बट लकी थे वो जो उन्हें सती मिली, जो उन्हीं के जैसी थी। मेरी किस्मत देखो, घर वालों के चक्कर में इतनी लड़कियों से मिल चुका हूँ पर आज तक कभी किसी को देख के ऐसा लगा ही नहीं कि ये मेरी अर्धांगिनी हो सकती है। मुझे तो लगता है कि मेरे लिए कोई बना ही नहीं है।
4: तुम ऐसे क्यों हो, जिंदगी खत्म हो गई है तुम्हारी भाई, अब नहीं मिली तो क्या, आगे तो मिल सकती है ना।
3: हाँ, इस सुनसान रास्ते पर जरूर मिलेगी।
4: ओए रुको रुको रुको, लड़की मिल गई।
3: लिफ्ट?
5: ओ नहीं नहीं, एक्चुअली लिफ्ट नहीं, कुछ देर की कंपनी चाहिए थी, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं टू हेल्प मी, बस तब तक यहाँ अकेले सेफ नहीं फील हो रहा था, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ी देर मेरे साथ।
3: ओ नो प्रॉब्लम एट ऑल, आओ नील, ये नील है और मैं हर्षित, हम ट्रैवलर्स हैं।
5: वाह दैट्स लवली, आई एम शुभी, मैं भी ट्रैवलर ही हूँ, सोलो ट्रैवल करने की आदत नहीं है लेकिन ट्राई करना चाहती थी, निकल तो गई पर यहाँ आकर फंस गई।
3: वाह सेम पिंच, तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी हो।
4: हर्षित मुझे जरा लेट हो रहा है, तुम्हें चलेगा अगर मैं निकलूं? तुम शुभी के साथ वेट कर सकते हो ना?
3: हाँ नील, तुम निकलो। आई मीन वो व्हाट, तुम जा क्यों रहे हो?
4: क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारी मंजिल मिल गई पर मुझे बहुत दूर जाना है हर्षित।
3: अरे तो कहाँ जा रहे हो दोस्त?
4: मैं तो जा रहा हूँ अपने भोलेनाथ के धाम अमरनाथ, लगता है तुमसे जल्द मुलाकात होगी।
5: कहाँ? अमरनाथ में?
4: हाँ वही, हो सके तो दोनों साथ में आना, वही मिलना मुझसे, मुझे अच्छा लगेगा। चलो चलता हूँ, हर हर महादेव।

0: जब जवानी का जोश आदमी में होता है तब उसको लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। फिर एक वक्त आता है जबकि जरूरत महसूस होती है, एक कंपेनियन, एक साथी की। तब रियलाइज होता है कि इस दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई तो बना है, और तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई जरूर होगा। शादी लाइफ में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता लाती है। शिव मिलन सिखाते हैं, शिव प्यार करना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।

0: पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434 6200042434।
4: नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 12 अगस्त को लग रहा है मेगा रोजगार मेला। पुलिस अधीक्षक ने कुचायकोट थाने का किया औचक निरीक्षण। ट्रेन से गिरकर एक युवक की हो गई मौत। माले नेता अजात शत्रु को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जाली नोट रखकर पान दुकानदार को फंसाने वाले को पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिला नियोजनालय के नेतृत्व में 12 अगस्त को मेगा रोजगार मेला का आयोजन हो रहा है। बताया जा रहा है कि तिरबिरवा फील्ड गांधी मैदान में 20 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसमें 500 से ज्यादा पदों पर युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सकेगा। इस रोजगार मेला में 8वीं, 10वीं, 12वीं और ITI डिप्लोमा तथा स्नातक अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। चयनित युवाओं को 14,000 से 30,000 रुपए तक मासिक वेतन का अवसर मिल सकता है। सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक इस रोजगार मेला में हिस्सा लिया जा सकता है। अभ्यर्थियों का पंजीकरण और प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। बिहार रोजगार सेतु पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कुचायकोट थाने में समीक्षा बैठक की, निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन को लेकर आवश्यक निर्देश दिया, साथ ही गंभीर मामलों की जांच जल्द पूरी करने का भी निर्देश दिया गया। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और वारंट कुर्की की प्रभावी निष्पादन पर भी जोर दिया गया। अनुसंधान में निष्पक्षता, वैज्ञानिकता और गुणवत्ता बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया। अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए पुलिस अधीक्षक ने चेताया कि हर हाल में विधि व्यवस्था को बनाए रखना है, लोगों को समयबद्धता के साथ मामले सुनिश्चित कर सहयोग प्रदान करना है, जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन और समयबद्ध कार्रवाई पर भी पुलिस अधीक्षक ने पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। आज 2 अलग अलग जगहों पर ट्रेन के साथ हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति का दोनों पैर कट गया। एक मामला सिधवलिया रेलवे स्टेशन का है, जहां ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक सिधवलिया के ही जलालपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक का नाम बली राय का 36 वर्षीय पुत्र राजेश यादव है, जो जलालपुर कला गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि यह असम में कपड़े की फेरी लगाकर रोजगार करता था। इसके माँ शनिचरा देवी की तबीयत खराब हो गई। सूचना मिलने पर यह गांव लौट रहा था। इसी बीच सिधौलिया रेलवे स्टेशन पर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से उतरने का प्रयास कर रहा था और इसी में गिर गया, ट्रेन के चपेट में आ गया और इसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। एक दूसरा हादसा थामे जंक्शन स्टेशन के पास हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ एक युवक ट्रेन के चपेट में आ गया जिससे इसके दोनों पैर कट गए। हालत गंभीर होने पर इसे मॉडल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ से डॉक्टरों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया। घायल युवक थामे थाना क्षेत्र के रिखई टोला गाँव का बताया जा रहा है। युवक की पहचान 30 वर्षीय मोहम्मद अजहरुद्दीन के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर परिसर में ही फोटोग्राफर का काम करता था। इसकी पत्नी नाराज होकर मायके चली गई थी और पत्नी को मनाने के लिए युवक ट्रेन पकड़ने आया था। इसी दौरान ट्रेन से गिर गया और इसके दोनों पैर कट गए। घटना के बाद से इसके परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। फिलहाल इसका पटना में इलाज चल रहा है और यह जीवन और मौत से जूझ रहा है। गोपालगंज में नगर थाना की पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी और भड़काऊ वीडियो वायरल करने के मामले में माले पार्टी के नेता आजाद शत्रु को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 43 सेकंड का एक वीडियो इनके द्वारा फेसबुक पर जारी किया गया है। इस वीडियो में एआई का इस्तेमाल किया गया है। प्रथम दृष्टया जांच में उक्त वीडियो कृत्रिम रूप से फर्जी तरीके से बनाया गया पाया गया है। इसके वजह से समाज में गलत संदेश जा रहा था और इसी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह एक अधिवक्ता भी हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। नगर थाना की पुलिस ने चिराई घर के पास पेट्रोल पंप के सामने एक गुमटी नुमा पान दुकान के पीछे एस्बेस्टस के नीचे से जाली नोट बरामद किया। इस मामले में पान दुकानदार से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनका इस पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस ने जिस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी उसको गिरफ्तार किया और उससे कड़ाई से जब पूछताछ शुरू की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी ने बताया कि वह पान दुकानदार को फंसाने के लिए जाली नोटों का बंडल उसके दुकान के पीछे रख दिया था और उसने ही पुलिस को सूचना दी ताकि पान दुकानदार जाली नोट के कारोबार में पकड़ा जा सके। परंतु पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए सही आरोपी को गिरफ्तार किया है और अब इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। FSL की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जाली नोट को जांच करते हुए जब्त किया है। बताया जा रहा है कि यह जाली नोट 43,700 रुपए है। पान दुकानदार को फंसाने के लिए जिस आरोपी ने पुलिस को सूचना दी थी वह नीलेश कुमार पिता दया शंकर सिंह साकिन भवानीगंज थाना माझागढ़ का रहने वाला है। इसने पुलिस को बताया कि यह पान दुकानदार को झूठे मुकदमे में फंसाना चाहता था, इसलिए इसने ही जाली नोट उसके दुकान के पीछे रखा था। अब पुलिस इसी आरोपी पर विधिक कार्रवाई कर रही है, नोट को जब्त कर लिया है। अलग अलग मामलों में गिरफ्तार 13 लोगों को आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसमें शराब की तस्करी, SC/ST एक्ट, NDPS एक्ट और चोरी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही कुछ लोगों को कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर भी पुलिस ने पकड़ा है। 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों और संस्थाओं का स्क्रीनिंग 8 अगस्त 2026 को सम्राट अशोक भवन ब्लॉक कॉलोनी गोपालगंज में निर्धारित है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले इच्छुक प्रतिभागी जिला के कला एवं सांस्कृतिक पदाधिकारी गोपालगंज को आवेदन पत्र दे सकते हैं। इसके लिए श्याम सिनेमा रोड में स्थित अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में जाकर पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। राजकीय डिग्री कॉलेज गौसिया माझा के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। DM ने 5 एकड़ भूमि के निःशुल्क निबंधन का आदेश दिया है। चयनित जमीन कॉलेज के नाम दाखिल खारिज कराने का भी निर्देश दिया गया। कॉलेज भवन निर्माण के लिए शिक्षा विभाग बिहार सरकार को अनुशंसा पत्र भी भेजा गया है। इसकी जानकारी गौसिया पंचायत के पूर्व मुखिया राधा रमन मिश्रा ने दी। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत जनता दरबार में आए लोगों की समस्याओं को सुनकर उसको निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर भी बात कर तत्काल समस्याओं के शीघ्र समाधान का निर्देश दिया गया। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत विशेष शिविर का आयोजन होगा। पात्र लाभुकों का ऑन द स्पॉट आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और सोलर रूफटॉप की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बैंक प्रतिनिधि भी ऋण सुविधा के लिए मौजूद रहेंगे। डीएम समीर सौरभ ने अधिक से अधिक लोगों से शिविर में पहुंचकर योजना का लाभ उठाने की अपील की। कुचायकोट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक एम्बुलेंस से 509 लीटर से अधिक विदेशी शराब को जब्त किया है। इस मामले में अभियुक्त बीकू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो बेगूसराय जिले के बीरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। शराब के परिवहन में प्रयुक्त एम्बुलेंस वाहन को भी जब्त किया गया है और इसमें कांड दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को पुलिस खंगाल रही है। थाना क्षेत्र के कबिलासपुर नहर से पुलिस ने एक अज्ञात युवती को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यह युवती नहर में डूबती हुई दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए नहर से युवती को बाहर निकाला। अचेत अवस्था में युवती को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इसका इलाज चल रहा है। युवती की पहचान खबर मिलने तक नहीं हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। नहर में पहुंचने के कारणों का भी पुलिस पता लगा रही है। फिलहाल युवती का इलाज चल रहा है। नगर थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त लक्की सिंह उर्फ आकाश दीप को गिरफ्तार कर लिया, जो दरोगा सिंह का पुत्र है और अधिवक्ता नगर थाना नगर जिला गोपालगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस केंद्र में जाकर लाइन डे का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना गया और उसे निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 12 अगस्त को लग रहा है मेगा रोजगार मेला। पुलिस अधीक्षक ने कुचायकोट थाने का किया औचक निरीक्षण। ट्रेन से गिरकर एक युवक की हो गई मौत। माले नेता अजात शत्रु को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जाली नोट रखकर पान दुकानदार को फंसाने वाले को पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 97097065775। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
13: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
14: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
15: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
16: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी।
17: इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं।
16: आज की कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
17: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया की स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और झिझक मौजूद हैं।
16: सच कहूं से अतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता। लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है?
17: देखिए, ये एक सामाजिक सोच का मसला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो हमारे समाज की लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
16: मतलब ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
17: बिल्कुल, माँ, पिता, भाई, पति, शिक्षक, सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई, सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
16: तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
17: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
16: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम साधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती है क्या?
17: यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिल पाते। इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय से मिलकर सुविधा सुनिश्चित करें।
16: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्यों अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
17: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
16: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
17: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता। आधी थाली में सब्जियां हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन हो, अनाज जैसे कि रोटी या चावल हो, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
16: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
17: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है ना, वही सबसे अच्छा है, बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
16: सेहतिया भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से न जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
17: हाँ हाँ, बिल्कुल है। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही गाँव की एक लड़की रीना की ये कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी। पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुआ तो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया था और कहा था कि किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ये कि उसे कितनी बार बदलना चाहिए। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली होने लगा, जलन होने लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद यह नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, रीना के साथ एक और समस्या थी। रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, चक्कर आते थे उसे, और कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन की बात है, स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा था। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आए थे। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बात करते हुए सुनी थी। दोस्तों, शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानियां बताई। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने रीना को समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। इसके अलावा रीना को सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां भी दी और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी। साथियों, रीना घर आ गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, समय पर पैर बदलना शुरू कर दिया और अपने खाने पीने में सुधार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। साथियों, आज रीना अपने गाँव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
16: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
17: बिल्कुल, और यही स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम का प्रयास है और हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता न करे।
16: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
17: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सोनी जी। अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों को भी पोषण की कभी कभी एक गंभीर समस्या हो जाती है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में या निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता। कई बार वे सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं, और इसके वजह से इसका सीधा असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
16: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
17: बिल्कुल, और यही बात हमें विश्व पोषण दिवस के संदेशों से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। और आज जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है।
16: सेहतिया भैया, आपने एनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
17: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, खासकर किशोर लड़कियों और महिलाओं में इसकी दर काफी ज्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होता है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है, इसलिए है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो यह कमी और बढ़ जाती है।
16: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
17: बिल्कुल सही समझा आपने। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल, अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत जैसे कि फल, केला, अमरूद, संतरा, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए। एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
16: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
17: बिल्कुल सोनी जी, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात और है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वह बीमारी का कारण भी बन सकता है।
16: साथियों, आज की बातचीत से तो एक बात साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती है। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुँचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
17: श्रोताओं, याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
16: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
18: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
18: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
19: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
20: सुनिए,
21: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
20: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
21: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
20: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
22: ठक ठक।
23: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
24: अच्छा, मिला ही नहीं
23: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
20: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
23: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
20: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
18: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
18: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
18: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
18: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

0: बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष शग्यो द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
10: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
9: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
10: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
13: अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555485507 या 91629335388।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। ये आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर्विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
2: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
3: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: We have seen the comments.
5: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
0: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
5: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
0: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
8: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
9: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
10: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के OPD में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार पल।
11: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर CBI द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, NTA के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, CBI का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, NTA के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, CBI ने दाखिल की चार्जशीट, NTA के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से CBI ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी CBI जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली NCR में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जल भराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, FCRA पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। UPI लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित FCRA विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी।

0: खाली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सीतामढ़ी जिले में दुग्ध चूर्ण संयंत्र समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में आशा कार्यकर्ताओं के लिए आशा घर की शुरुआत की जाएगी। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सीतामढ़ी जिले में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध चूर्ण संयंत्र और मत्स्य ब्रूड बैंक के प्रजनन कार्य का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री इस दौरान जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे।
1: मुख्यमंत्री सीतामढ़ी जिले के राघोपुर बखरुई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आज जिले को कई सौगात देंगे। वह 76 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत वाली 30 MTPD क्षमता के दुग्ध चूर्ण संयंत्र परियोजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही मत्स्य ब्रूड बैंक के प्रजनन कार्य का उद्घाटन भी करेंगे। स्थानीय लाभुकों को ऑक्सीजनरेटेड बैग के माध्यम से स्पॉन का वितरण तथा मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री पहले पुनौरा धाम पहुंचेंगे, जहां मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद परिसर में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह और डेयरी मत्स्य और पशुपालन संसाधन मंत्री नंद किशोर राम समेत जिले के जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में 400 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों का पलायन रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। श्री चौधरी ने कहा कि 211 नव स्थापित डिग्री कॉलेजों में 10 अगस्त तक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अब नीट और जेईई जैसी प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने मठ और मंदिरों से स्कूलों को गोद लेने या नए स्कूल खोलने का आग्रह भी किया।
2: अगले कुछ दिनों में 400 से अधिक और डिग्री कॉलेज खोलूंगा सर, क्योंकि हमारी कल्पना है कि बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाए। मैं तो यह आग्रह करूंगा, जितने मठ और मंदिर हैं तय कीजिए, एक एक स्कूल एक एक कॉलेज सब आपको गोद लेने का काम करिए और आप लोग खोलिए, हम लोग आपको मान्यता देंगे।
0: उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि नवगठित 211 सरकारी डिग्री कॉलेजों में संविदा के आधार पर नियुक्त होने वाले सहायक प्राध्यापकों को अपनी पीएचडी की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने कहा है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले सहायक प्राध्यापक सेवा अवधि के दौरान यदि पीएचडी कर रहे हैं तो उन्हें इसे छोड़ना होगा। विभाग का मानना है कि शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से शिक्षण कार्य करना होगा, इसलिए शोध और नियमित सेवा साथ साथ संभव नहीं है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में आशा कार्यकर्ताओं के लिए आशा घर की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि आशा घर की स्थापना से आशा कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और सामुदायिक सहभागिता को मजबूती मिलेगी। इस बीच राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी सिविल सर्जन को आशा घर शुरू करने के निर्देश भेज दिए हैं। इस योजना के तहत हर जिले में जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर में आशा घर के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारतीय भुगतान परिषद PCI ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बने रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
3: यूपीआई के जरिए लेन देन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेन देन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
4: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में नए खनिज उत्पादों के लिए ब्लॉक चिन्हित कर खनन की तैयारी की जा रही है। खान एवं भूतत्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया में लौह अयस्क के रूप में दुर्लभ खनिज मैग्नेटाइट के भंडार का पता चला है। वहीं रोहतास जिले में ग्लूकोनाइट के ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। विभाग के सचिव अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के स्तर पर खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय टीम 17 अगस्त को पटना आएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा में बिहार 7,30,00,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर का स्थान है। देश भर में इस मिशन के तहत कुल 25,00,000 OPD पंजीकरण हुए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरणवाल ने कहा कि ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने कहा है कि प्रदेश भर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में आवास के साथ बाजार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य नागरिक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था होगी। श्री सिंह ने पाटलिपुत्र टाउनशिप से जुड़ी अंतर विभागीय परामर्श बैठक में निर्देश दिया कि आवासन के साथ ही बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि टाउनशिप में रोजगार, आवास, वाणिज्यिक गतिविधियां, मनोरंजन और संस्थागत सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि इससे प्रदेश में नियोजित शहरों का विकास संभव हो सकेगा। प्रदेश में साइबर धोखाधड़ी के प्रति लोगों को जागरूक करने और इस संबंध में सूचना देने के लिए सुधा दूध के पैकेट और बिजली बिल की प्रतियों पर हेल्पलाइन नंबर अंकित किए जाएंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने साइबर अपराध से जुड़ी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दूध के पैकेट और बिजली बिल पर हेल्पलाइन नंबर 1930 अंकित करने के निर्देश दिए हैं। श्री अमृत ने कहा कि इसके माध्यम से किसी भी प्रकार की वित्तीय साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने केंद्र सरकार से वैशाली जिले में हाजीपुर के पासवान चौक से बिदुपुर तक एलिवेटेड सड़क के निर्माण की मांग की है। नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान श्री शैलेंद्र ने भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर पीपा पुल के निर्माण की मांग भी रखी है। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, कटिहार, बांका और जमुई समेत राज्य के दक्षिणी भागों के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है।
1: दिनांक 8 अगस्त को राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है तथा शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पुणे में 12 अगस्त से आयोजित होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 17 सदस्यीय बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकर ने बताया कि राजगीर खेल अकादमी में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक गेविन फरेरा के मार्गदर्शन में टीम का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि आज टीम पुणे के लिए रवाना होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गोपालगंज जिले में शिक्षा विभाग के कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि इस सुविधा से लोगों की सभी समस्याओं का समाधान अब एक ही जगह पर हो सकेगा। रोहतास जिले के मुरादाबाद में कल देर रात समरसता का संदेश लेकर पहुंची संत रविदास जयंती की कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। उल्लासपूर्ण माहौल में कलश को संत रविदास मंदिर में स्थापित किया गया है। मधुबनी जिले के जयनगर स्थित SSB की 48वीं वाहिनी मुख्यालय से राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ओवर ब्रिज तक देशभक्ति मैराथन का आयोजन किया गया। अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास बंगाली टोला से पुलिस ने छापेमारी कर 12 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक जब्त किया है। मौके से 2 नेपाली तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार में साइबर अपराध पर बड़े प्रहार की तैयारी, पटना, नवादा और नालंदा देश के टॉप 10 हॉट स्पॉट में। दैनिक जागरण ने सड़क परियोजनाओं पर लिखा है, नाबार्ड से उधार लेकर सड़क और पुल बनाएगी सरकार। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले को तरजीह देते हुए लिखा है, एक्सपर्ट ने पेपर के 2 सेट बनाकर बेचे थे, चार्जशीट दाखिल। प्रभात खबर ने ईओयू की कार्रवाई पर लिखा है, 4 साल की नौकरी में सहरसा के डीपीओ के पास सीवान में भव्य मकान, 40 लाख का जेवर, छपरा में पत्नी के नाम 6 बीघा जमीन। आज अखबार लिखता है, बेटा से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया 25 टन मखाना। राष्ट्रीय सागर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार की संस्कृति, सभ्यता और लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाना हमारी प्राथमिकता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सीतामढ़ी जिले में दुग्ध चूर्ण संयंत्र समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में आशा कार्यकर्ताओं के लिए आशा घर की शुरुआत की जाएगी। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए UPI लेन देन निःशुल्क रहेगा। और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029494121 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
11: रंजन बोल रहे हैं, आज करते हैं
10: जी। कैसे हैं रंजन जी?
11: ठीक है।
10: तो क्या कर रहे थे अभी?
11: कुछ नहीं, इधर पढ़ाई थोड़ा है तो बैठे हुए।
10: पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी?
11: बीएड कंप्लीट हो गया।
10: चलिए, उसके आगे अभी कुछ तैयारी नहीं चल रही है?
11: करते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए।
10: चलिए बढ़िया है। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
11: मम्मी का नाम है लाल।
10: लिया जाए आज का पहला प्रश्न आपसे।

0: आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए गया, बी औरंगाबाद, सी नवादा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गया को पिछ के लिएगा।
0: जोर है?
1: जोर तो नहीं है।
0: लॉक करो।
1: हाँ कर दीजिए।
0: चलिए तो रंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका समय शुरू है अब।
1: ऑप्शन सी को
0: स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए श्योर है, लॉक कर दें?
1: हाँ कर दीजिए।
0: तो रंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंग, बी जॉन व्हीलर और सी एडविन हबल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी को कंफर्म नहीं है।
0: जॉन व्हीलर कंफर्म नहीं है लेकिन लॉक करो। चलिए रंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जॉन व्हीलर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए? आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी के एम मुंशी और ऑप्शन सी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी क्या है?
0: ऑप्शन
1: सी क्या है? ये
0: ऑप्शन ए की बी
1: मुझे ऑप्शन सी क्या है, नाम क्या है उनका?
0: ऑप्शन का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया है बी एन राव, बी है के एम मुंशी और सी है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर।
1: इन्हीं को फिक्स कीजिएगा।
0: ऑप्शन सी।
1: हाँ
0: श्योर है? लॉक कर दो। आपकी आवाज काफी धीरे आ रही है,
1: कर दीजिए इसी को, ऑप्शन सी को।
0: चलिए तो रंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा
1: बी एन राव।
0: हाँ जी
1: ठीक है।
0: ओके हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
2: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना।
2: नाम मेरा गुलाब सा खातून है।
0: जी कहाँ से बात कर रही हैं गुलाब सर जी?
2: गोपालगंज से।
0: गोपालगंज में कहाँ से?
2: सदुल्लापुर से।
0: सदुल्लापुर से।
2: हाँ
0: जी, क्या करती हैं आप?
2: घर पर आते हैं, सिलाई करते हैं।
0: चलिए सिर्फ अपना या फिर कस्टमर का भी?
2: अपना भी करते हैं, कस्टमर का भी करते हैं।
0: चलिए बढ़िया है। पढ़ाई कहाँ तक हुआ है आपका?
2: मेरा इंटर फाइनल था, उसके बाद पढ़ाई ही हम नहीं किए।
0: अच्छा, इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी है।
2: जी,
0: तो आप लोग क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले कॉल किए हैं?
2: नहीं, पहले भी किए थे।
0: अच्छा, तो आज के पहले प्रश्न के लिए तैयार हैं आप?
2: जी, मैं पूछिए।
0: ओके, अम्मी अबू का नाम बता दीजिए अपने।
2: अबू का नाम है साबिर हुसैन और अम्मी का नाम है नूरजहां।
0: चलिए, लिया जाए पहला प्रश्न।
2: जी मैम।
0: जी,

0: सबसे पहला प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन ए मैम।
0: श्योर है?
1: लॉक के सहारे।
0: लॉक के सहारे तो लॉक कर दो।
1: जी कीजिए।
0: चलिए तो चलिए गुलाब सर जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर विटामिन ए लॉक कर दिए। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही है।
1: सही है
0: जी।
1: मैं पहले ही डरवा रही
0: हूँ। नहीं कहीं ना। चलिए जय, आपसे दूसरा प्रश्न।
1: जी मैम।
0: जी, और आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सुभाष चंद्र बोस।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक करो?
1: जी मैम।
0: तो गुलाब सर जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सुभाष चंद्र बोस को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री।
1: जी मैम।
0: जी, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
9: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
9: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
9: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
9: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
9: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
9: बोलबम हर हर महादेव।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994921 8029994921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
12: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
12: जी
0: नाम बता दीजिए अपना।
12: निरंजन कुमार बोल रहे हैं।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं निरंजन जी?
12: बतरदे से।
0: जी क्या करते हैं आप?
12: जी बाहर आते हैं।
0: जी
12: सूरत में।
0: पढ़ाई कहाँ तक हुई
12: है? काम करता हूँ।
0: पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी?
12: इंटर तक हुई है।
0: इंटर तक हुई है। तो आज चलो कुछ कॉन्टेस्ट में कॉल किया, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
12: जी तैयार है।
0: जी तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
12: हमारा माता जी का नाम है श्रीमती चन्मती देवी और पिताजी का श्री सुमन माघी।
0: जी लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
12: जी
0: जी

0: आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी विजयी विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: राष्ट्रीय गीत की गान,
0: राष्ट्रीय गीत
1: वंदे मातरम।
0: श्योर है?
1: जी
0: जी। तो चलिए दिनेश रंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी
1: से? विटामिन ए।
0: विटामिन ए।
1: जी।
0: श्योर है?
1: जी श्योर है।
0: लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर विटामिन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: और आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, हड्डियों का कमजोर होना किस पोषक तत्व की निशानी है? हड्डियों का कमजोर होना किस पोषक तत्व की निशानी है? ऑप्शन ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी लोह आयरन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: कैल्शियम।
0: श्योर है?
1: जी
0: जी। तो लॉक कर दें?
1: जी
0: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कैल्शियम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए गया, बी औरंगाबाद, सी नवादा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मगध का
0: जी
1: ऑप्शन,
0: ऑप्शन ए गया, बी औरंगाबाद, सी नवादा।
1: गया होगा।
0: प्योर है?
1: प्योर तो नहीं है लेकिन लग रहा है।
0: लॉक कर दें?
1: जी
0: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है?
1: 28 फरवरी।
0: श्योर है?
1: जी श्योर है।
0: लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। ऑप्शन सुनिएगा कि लॉक कर दें?
1: राष्ट्रीय है कि अंतर्राष्ट्रीय?
0: नहीं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस।
1: ऑप्शन 28 फरवरी होगा।
0: चलिए तो लॉक करो।
1: लॉक कीजिए। जी
0: जी। तो निरंजन जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर 28 फरवरी लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न लिया जाए आपसे?
1: जी
0: जी। आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक नासेर, बी लेक करीबा, सी लेक वोल्टा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ऑप्शन लिएगा?
0: ऑप्शन ए लेक नासेर, बी लेक करीबा, सी लेक वोल्टा।
1: बी को लॉक कीजिए, कंफर्म नहीं है।
0: बी को
1: जी।
0: ओके, तो चलिए निरंजन जी आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लेक करीबा को लॉक करते हैं। ऑप्शन बी। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा लेक वोल्टा। 8,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से ये बड़ा है। हेलो, फ्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए।
2: रुपेश कुमार।
0: रुपेश कहाँ से बात कर रहे हैं रुपेश जी?
2: जादवपुर से।
0: जादवपुर से, क्या करते हैं आप?
2: पढ़ाई पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
2: 12th में।
0: 12th में पढ़ते हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: ठीक चल रहा है।
0: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में इससे पहले भी कॉल किए हैं आप?
2: हाँ
0: जी। तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: हाँ
0: ओके,

0: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: मेरे माता जी का नाम श्रीमती सुमिता देवी और पिताजी का नाम श्री संजय प्रसाद चौरसिया है।
0: जी तो रूपेश जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, हड्डियों का कमजोर होना किस पोषक तत्व की निशानी है? हड्डियों का कमजोर होना किस पोषक तत्व की निशानी है? ऑप्शन ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी विटामिन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: कैल्शियम।
0: श्योर है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूं?
1: हाँ।
0: ओके तो चलिए रुपेश जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कैल्शियम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके अच्छा, आपका दूसरा प्रश्न ये है, मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए गया, बी औरंगाबाद, सी नवादा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: नवादा को चेक कीजिए।
0: योर है?
1: क्वेश्चन क्या बोले? मगध
0: प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है?
1: नवादा को चेक कीजिए।
0: ओके लॉक कर दूं?
1: हाँ।
0: जी तो चलिए रुपेश जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नवादा को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा गया। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
6: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
10: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
11: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
11: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
12: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
11: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
12: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
11: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
12: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
13: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
14: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
14: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
14: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
15: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
16: मैं बनूंगा।
15: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029994921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेन 90.4 आमजेड पर।
17: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
18: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
17: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
18: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
2: के बाद फिर से आपका स्वागत है।

0: उत्तरायण से।
1: पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
0: पढ़ाई तो 7 क्लास तक हुआ है।
1: तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
0: जी।
1: मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
0: पापा का नाम श्री सुदर्शन पंडित, मम्मी का नाम श्री परमिला देवी।
1: जी, तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
0: जी
1: जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी विजयी विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तीसरा का लॉक करिए।
0: विजयी विश्व तिरंगा
1: जी।
0: चोर है?
1: चोर तो नहीं है।
0: ओके, तो चलिए गणेश जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विजयी विश्व तिरंगा लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा वंदे मातरम। हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना।
2: रोहित कुमार।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं रोहित जी?
2: जी मैम, गौसियाता से।
0: गौसियाता
2: जी।
0: जी क्या करते हैं आप?
2: मैम पढ़ते हैं।
0: किस क्लास की पढ़ाई करते हैं आप?
2: बीए में।
0: बीए फर्स्ट ईयर चल रहा है कि लास्ट ईयर?
2: मैम सेकंड ईयर में।
0: सेकंड ईयर में है। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
2: ठीक चल रही है मैम।
0: चलिए बढ़िया है। तो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं इससे पहले?
2: एक बार किए थे मैम।
0: अच्छा, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी मैम।
0: जी मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
2: जी पिताजी का नाम श्री राम रतन शाह
0: जी,
2: और माता जी का नाम श्रीमती सीमा देवी
0: जी। पापा जी क्या करते हैं आपके?
2: मैम अभी तो कुछ नहीं करते थे, मतलब पहले फॉरेन कंट्री में रहते थे, अभी कर रही हैं।
0: ओके, और आपका क्या लक्ष्य है, आगे क्या करने का इरादा है?
2: अभी तो मैम सिविल एआई सर्विस का तैयारी करते हैं।
0: चलिए बढ़िया है। तो लिया जाए पहला प्रश्न?
2: जी मैम।
0: जी

0: आपसे आपका पहला प्रश्न ये है।
1: यस मैम।
0: भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है?
1: जी मैम।
0: ऑप्शन ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी विजयी विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी मैम।
0: बी वंदे मातरम।
1: जी मैम।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वंदे मातरम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी नंबर।
0: 12 फरवरी।
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करो?
1: लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए रोहित जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 12 फरवरी को लॉक करते हैं।
1: जी,
0: और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 13 फरवरी।
1: अच्छा
0: जी।
1: जी मैम।
0: हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
12: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029 94 921, 8029 94 921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
14: जी नमस्ते मैम।
15: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
14: निरंजन कुमार बोल रहे हैं, बता दीजिए।
15: ठीक, कैसे हैं निरंजन जी?
14: ठीक, आप सुनाइए।
15: हम भी बढ़िया है।
14: ठीक
15: जी, पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी निरंजन जी?
14: इंटर तक हुई है।
15: उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी है?
14: पढ़ाई छोड़ दी है।
15: चलिए, मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
14: माता जी का नाम है श्रीमती चंद्रमती देवी और पिताजी का श्री सुमन माझी।
15: जी, तो हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
14: जी तैयार है।
15: जी

0: तो निरंजन जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सिरियस, बी सूर्य, सी प्रोक्सिमा सेंटारी। आपका समय शुरू है अब।
1: ऑप्शन और से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए सिरियस, बी सूर्य, सी प्रोक्सिमा सेंटारी।
1: सी होगा
0: प्रोक्सिमा सेंटारी।
1: कंफर्म तो नहीं है
0: तो लॉक करूं?
1: बी को कीजिए, सूर्य।
0: सूर्य को करें? हेलो,
1: सूर्य को करिए। जी
0: जी, पक्का श्योर है ना? सूर्य को करें?
1: हाँ करिए, कंफर्म तो नहीं है, लग रहा है।
0: चलिए तो निरंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सूर्य को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है,
1: जी
0: ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, बी हरित क्रांति, सी सिंचाई परियोजना। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए होगा,
0: दुग्ध उत्पादन।
1: जी।
0: श्योर है?
1: जी श्योर है।
0: चलिए तो लॉक कर दें।
1: जी।
0: ओके, तो चलिए निरंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? आपका ऑप्शन ए है 73वां संशोधन, बी है 74वां संशोधन।
1: 73वां होगा।
0: श्योर है?
1: जी श्योर है।
0: लॉक कर दें?
1: जी लॉक कर दें।
0: ओके, तो चलिए निरंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 73वां संशोधन लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, सबसे हल्की धातु कौन सी है?
1: हीलियम।
0: हीलियम
1: जी।
0: ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन में तो हीलियम है ही नहीं।
1: ऑप्शन में हीलियम नहीं है, बोलिए।
0: सोडियम ऑप्शन ए, बी है लिथियम, सी है मैग्नीशियम। बस समय चौथा है।
1: लिथियम होगा।
0: लिथियम होगा
1: जी।
0: चोर है?
1: जी चोर है।
0: चलो करें।
1: हीलियम हम पढ़े थे। हीलियम।
0: हीलियम
1: जी।
0: तो लिथियम को लॉक करें?
1: जी।
0: चलिए तो निरंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लिथियम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। तो आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिक्टेस, बी एस्कर्वी, सी बेरीबेरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन डी की कमी से?
0: जी
1: बेरीबेरी हो।
0: श्योर है?
1: जी श्योर है।
0: लॉक करें?
1: जी
0: जी। तो निरंजन जी आपके पांचों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बेरी बेरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रिक्टर। ठीक, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
2: नाम सालू कुमारी शेरशाह टोला से।
0: जी कैसे हैं सालू जी।
2: अच्छा आप बताइए।
0: हम भी बढ़िया है। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है सालू जी आपकी।
2: अभी नाइन्थ क्लास में आप पढ़ रहे हैं।
0: अभी नाइन्थ में आई है।
2: हाँ
0: जी, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी।
2: अच्छी चल रही है।
0: चलिए अच्छी बात है कि अच्छी चल रही है। तो कुछ सोचा है आपने आगे क्या करना है आपको।
2: हाँ सिविल सर्विस में जाना है।
0: सिविल सर्विस में जाना है। जी तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सालू जी आप।
2: मम्मी का नाम श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम बलिंद्र कुमार प्रसाद।
0: जी तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए।
2: यस मैम।
0: ओके

0: तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल, सी क्लोरोफिल। आपका समय श्रोता अब।
1: हम ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड।
0: श्योर है?
1: श्योर, लेकिन लॉक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए शालू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर है जल।
1: जल
0: जी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके मैम, थैंक यू,
0: वेलकम।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
8: बोलबम।

0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके ड्यूरिंग जिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: प्रियांशु गुप्ता थाने से।
0: पूरा नाम बताइए अपना।
1: प्रियांशु गुप्ता थाने से।
0: अच्छा, प्रियांशु गुप्ता
1: जी
0: आपकी आवाज़ धीरे आ रही है। तो क्या करते हैं प्रियांशु जी आप?
1: अभी स्कूल पढ़ते हैं।
0: स्कूल में पढ़ते हैं। किस क्लास की पढ़ाई चल रही है आपकी?
1: सेवेंथ
0: में। तो आपने सोचा है आगे पढ़ के क्या करना है आपको?
1: अभी तो नहीं।
0: अभी नहीं सोचे हैं। अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप।
1: पापा जी का नाम सुपेजा ध्रुव था और मम्मी का नाम सुपेजा।
0: और पापा जी क्या करते हैं आपके?
1: वो विदेश में रहते हैं, दुबई।
0: अच्छा अच्छा, और आपको क्या करना है आगे, कुछ सोचा है आपने? अच्छा अच्छा, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि नेटवर्क वाले एरिया में जाइए।
1: बोलिए
0: जी। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: इससे पहले आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
1: हाँ, एक बार किए थे।
0: अच्छा अच्छा, चलिए तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
1: हाँ।
0: चलिए,

0: तो प्रियांशु जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम। आपका समय शुरू होता है अब। अरुणाचल प्रदेश। श्योर है? लॉक कर दें? चलिए, तो प्रियांशु जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, बी 22 जून, सी 22 मार्च। आपका समय शुरू होता है अब।
1: 22 अप्रैल।
0: श्योर है? लॉकर। चलिए, तो प्रियांशु जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 22 अप्रैल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए? आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2 और ऑप्शन सी 4। आपका समय शुरू होता है अब।
1: 1000 क्वेश्चन बोलिएगा।
0: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4। सी। ऑप्शन 4, मतलब ऑप्शन सी 4।
1: नहीं, आंसर होगा
0: थ्री। आंसर होगा
1: ऑप्शन बी 3।
0: श्योर है? आप कहीं सर्च कर रहे हैं?
1: नहीं।
0: तो मुझे अगर थोड़ा सा भी अगर ऐसे भनक लगता है तो मैं कॉल कट कर दूंगी कि आप कहीं सर्च कर रहे हैं। जी, चलिए, तो आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी 3 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए? चलिए, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोमती, बी घाघरा, सी यमुना। आपका समय शुरू होता है अब।
1: यमुना।
0: श्योर है? लॉक करो। लॉक कर दो।
1: हाँ, लॉक कर दीजिए।
0: कोई है आपके पास में?
1: नहीं।
0: तो चलिए, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी यमुना को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। और तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: तैयार है।
0: और आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए एस्टेफ, बी फीमर, सी रेडियस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बोलिएगा।
0: एस्टेफ, बी फीमर, सी रेडियस।
1: एस्टेफ।
0: ऑप्शन ए। श्योर है? लॉक कर दूं? चलिए, तो चलिए प्रियांशु जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार हैं आप छठे प्रश्न के लिए? आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सी सुब्रमण्यम, बी वर्गीज कुरियन और सी एम एस स्वामीनाथ। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी।
0: श्योर है? ओके, ऑप्शन सी बोले हैं, एम एस स्वामीनाथ। ओके, तो चलिए प्रियांशु जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथ को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए? आज से आपका सातवां प्रश्न ये है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? आपका ऑप्शन ए है प्रकाश की कमी के कारण, बी है माध्यम के अभाव के कारण और सी है गुरुत्वाकर्षण के कारण। माध्यम के अभाव के कारण। श्योर है? प्रकाश की कमी या गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं हो सकता है?
1: नहीं।
0: चलिए तो आपके सातवें प्रश्न का उत्तर माध्यम के अभाव के कारण लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप आठवें प्रश्न के लिए? आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1945, बी 1947, सी 1950। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन
0: ए 1945, बी 1947, सी 1950।
1: ऑप्शन ए 1945।
0: श्योर है? लॉक कर दो?
1: कर दीजिए।
0: ओके, तो प्रियांशु जी, आपके आठवें प्रश्न का उत्तर 1945 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके आठवें प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप नौवे प्रश्न के लिए? चलिए, तो कैसा लग रहा है आपको नौवे प्रश्न तक आके?
1: बहुत अच्छा।
0: चलिए तो प्रियांशु जी, आपसे आपका नौवा प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में हार्मोन की तरह भी कार्य करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी और ऑप्शन सी विटामिन के। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी और ऑप्शन सी है विटामिन के।
1: अच्छा, क्वेश्चन यही ना था, ये कौन सा विटामिन हार्मोन?
0: हाँ, हार्मोन की तरह शरीर में कार्य करता है। हेलो,
1: विटामिन डी, ऑप्शन बी।
0: आप कहीं सर्च कर रहे हैं? किट किट की आवाज आ रही है?
1: नहीं तो हम अकेले हैं रूम में, पंखा चल रहा है।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: क्या कहा तुमने? मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
10: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
11: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या? मुरारी लाल विजय कुमार,
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
10: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करें 87-894-18-744।
14: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
15: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
16: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
17: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: बिमल कुमारी, लाइन बजाते
1: हैं। जी कैसे हैं बिमल जी?
2: ठीक है।
1: तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी बता दीजिए।
2: ग्रेजुएशन फाइनल है।
1: जी अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम श्रीमती प्रभाती देवी है, पापा जी का नाम रामा जी प्रसाद है।
1: जी तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी मैम।
1: तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल और सी क्लोरोफिल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जल।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: चलिए तो विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए मैम।
0: अनुच्छेद 352।
1: 352
0: जी। श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक करो?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, रक्त का थक्का बनने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? रक्त का थक्का बनने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिका, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स और ऑप्शन सी प्लाज्मा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: प्लेटलेट्स होना चाहिए मैम।
0: होना चाहिए, तो लॉक किसे करूं?
1: प्लेटलेट कीजिए।
0: यही करें? प्लेटलेट
1: जी।
0: तो चलिए विमल जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्लेटलेट को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सिरियस, बी सूर्य, सी प्रोक्सिमा सिटारी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक बार और मैम बोलिएगा।
0: क्वेश्चन या ऑप्शन?
1: क्वेश्चन।
0: पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सिरियस, बी सूर्य, सी
1: बी ऑप्शन बी सूर्य।
0: श्योर है?
1: जी।
0: ओके, लॉक कर दूं?
1: जी मैम।
0: तो चलिए विमल जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सूर्य को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आज से आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी कजिंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
1: ऑप्शन ए मैम।
0: कान्हा राष्ट्रीय उद्यान।
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
1: कोई बात नहीं
0: जी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके मैम, बाय
0: बाय।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के विनर, और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त। और रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए रेडियो रिंजम 90.4 FM। नमस्कार।
3: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
12: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 8570-3242 पे।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमर जेड पर।

0: किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0975 6575।

0: कुछ नहीं यार, बोर हो रहा हूँ, कहीं घूमने चलते हैं।
1: गोवा चलोगी?
0: नहीं यार, बहुत एक्सपेंसिव है।
1: बिल्कुल नहीं। आरएन इवेंट मैनेजमेंट प्रेजेंटेड स्ट्रेंजर्स इन गोवा फॉर 3 डेज सिर्फ 150 रुपीज में।
0: वाव, कैसे?
1: सिंपल, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पे क्लिक करो, फॉर्म फिलअप करो, 150 रुपीज पे करो,

0: रजिस्ट्रेशन करो, बस इतना ही।
1: उसके बाद?
0: उसके बाद क्या, एक लकी ड्रॉ होगा जिसमें से 50 मेल और 50 फीमेल सिलेक्ट होगा। उन लोगों को 3 दिन के लिए 4-स्टार रिजॉर्ट में रहने के लिए मौका मिलेगा। बहुत सारी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलेगा, लाइक पूल पार्टी, डीजे, अनलिमिटेड खाना, डेटिंग नाइट और भी बहुत कुछ। और हाँ, ये सब उन 100 लकी विनर्स को मिलेगा बिल्कुल फ्री में, और आने जाने का खर्चा भी फ्री। क्या सोच रहे हो, हम लोग तो बहुत पैसा बहुत जगह में खर्च करते हैं। एक बार इधर अपना लक ट्राई करके देखती हूँ, अगर लक खुलते है तो गोवा बिल्कुल फ्री में।
1: वाओ, चलो फिर।
0: हम लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपने किया नहीं? अगर नहीं किया तो अभी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन करो और गोवा जाने का मौका पाओ। हरी अप, रजिस्ट्रेशन लिमिटेड है।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो?

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 97714861.
7: You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:22 हो रहे हैं हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने का फरमाइश करें आप तो पुराने गाने का फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरू करते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहला पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बुलेट चौधरी तीन फिड़िया से और गाना सुनना है ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सुनो सर, मुझे गाना सुनना है। और इस मैसेज को करते हैं सत्यम जी श्यामपुर से। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि कैसे हैं सर, और इस गाने की फरमाइश करती हैं सरिया फ्रॉम अमोम मोजम से और गाने का बोल देती हैं बोले चूड़िया बोले कंगना। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सना भैया कैसे हैं आप, आशा चौहान मिले सराफरा परसौनी से गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, फ़िलहाल स्वागत है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर हम सफरोज अली का आकिल टोला से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है, फिलहाल बन रहे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे और गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहले गाने के फरमाइश पूरी करते हैं बुलेट चौधरी जी के फरमाइशों के साथ।

रेडियो एम जी एम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश। यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा मैसेज करना है जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है और फिर आपकी फरमाइश हम कुछ ही समय में आपकी फरमाइश को प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और अगले गाने हम सभी सुनते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया कि सुपर सॉन्ग सुनो भाई, आँख नम हो गया। और इस मैसेज को करते हैं महमूद जी किरला से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बिल्कुल काफ़ी दर्द भरा गाना। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है अंकुश कुमार सासामुसा से जुड़े हुए, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है लेकिन कौन से गाने सुनेंगे ये बता दीजिए, तभी आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश की जाएगी। आगे मैसेज और अगले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं और इस गाने के फरमाइश करते हैं सत्यम जी, और गाने का बोल देते हैं आ कहीं दूर चले जाएं हम। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी, आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहां टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50। You have a text message.

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामछिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और समय, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे बढ़ा जाए आगे। मैसेज तो कई पहुँचे हुए, लेकिन मैसेज को रोकेंगे और आज हम फिर जानेंगे सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, और आज हम चर्चा करेंगे डायरिया के बारे में, यानी दस्त के बारे में। और डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को बार बार पतला या पानी जैसा मल होता है। इससे शरीर में पानी और आवश्यक लवण इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन कहते हैं। यदि समय पर उपचार ना मिले तो यह विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर हो सकता है। इनके कारण है दूषित भोजन या पानी का सेवन, बैक्टीरियल वायरल या परजीवी का संक्रमण, गंदे हाथों से भोजन करना, बासी या खराब भोजन करना, भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग। इनके लक्षण हैं बार बार पतला या पानी जैसा मल आना, पेट में मरोड़ या दर्द, मतली जैसा मिजाज होना और उल्टी होना, बुखार, कुछ मामलों में बुखार भी आ जाता है, कमजोरी और थकान महसूस होना, अधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, पेशाब कम आना, चक्कर आना, निर्जलीकरण का संकेत, ये सारे लक्षण हैं। इनकी जांच है डॉक्टर द्वारा शारीरिक परीक्षण, आवश्यकता पड़ने पर मल की जांच, गंभीर मामलों में रक्त की भी जांच हो सकती है। इनके उपचार है ORS का घोल बार बार पिलाए, खूब पानी, नारियल पानी, नींबू पानी और अन्य स्वच्छ तरल पदार्थ ले, हल्का और सुपाच्य भोजन करे, जैसे खिचड़ी, दही, केला और चावल। छोटे बच्चों को स्तनपान जारी रखें, डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाई न ले, यदि डॉक्टर आवश्यक समझे तो संक्रमण के कारण के अनुसार दवा देंगे। इनके बचाव है हमेशा साफ और उबला या शुद्ध पानी पिए, खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोए, भोजन को ढक कर रखें, ताज़ा और स्वच्छ भोजन करें, खुले में बिकने वाला अस्वच्छ भोजन ना खाए, उसे खाने से बचे, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर खाए। संभावित जटिलताएं हो सकती हैं यदि समय पर उपचार ना मिले तो गंभीर निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, शरीर में लवणों का असंतुलन, कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्या आ सकती है। बच्चों और बुजुर्गों में जान का खतरा रहता है, कब तुरंत डॉक्टर के पास जाए ये भी हम सभी जानेंगे। तो सबसे पहले दस्त 2-3 दिन से अधिक समय तक जारी रहे, बार बार उल्टी हो और पानी ना रुक रहा हो, मल में खून दिखाई दे, तेज बुखार हो, बहुत कम पेशाब आए या बेहोशी जैसी स्थिति हो। छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं या बुजुर्गों में दस्त के लक्षण हो तो ये सारे डायरिया के लक्षण हैं, और कुछ बचाव हैं, सारी गतिविधियां हैं। ऐसी गतिविधियां यदि आपको या आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस किसी भी व्यक्ति को हो तो उसको ऐसी जानकारी दें और उसको बताएं कि आप अपने आप को इलाज कराएं। यह बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, आप इसका इलाज कराते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सारी जानकारी रेडियो रामछिम के माध्यम से दी जा रही सेहत सही लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत, तो ऐसी जानकारी हर रोज दी जाएगी। आप सब बने रहें और अपने जीवन में इसका उपयोग करें। तो फिलहाल कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे और कार्यक्रम में जो भी मैसेज पहुंचे हुए मैसेज को शामिल करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि नमस्ते सर, रंजन कुमार तमकोही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से गाने का बोल। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, आज हमें भी गाना सुनना है। तो बिल्कुल सुनाएंगे, और इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे, स्वागत है आपका। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सर मेरा गांव गलत बताएं। तो गलत नहीं, आप बोले थे श्यामपुर तो श्यामपुर ही बताए हैं। और इस मैसेज को करते हैं सत्यम जी, और गाने के लिए कहते हैं धन्यवाद सर गाना बजाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रामछिम सुनने के लिए, सुनते रहें। फिलहाल बढ़ते आगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है और लभेरी लाल के आवाज़ में बोलबम का बिरजाभार धुन में गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है,
और इस गाने के फरमाइश करने वाले हमारे श्रोतागण हैं एक प्रमोद जी। तो चलिए प्रमोद जी, अंकुश कुमार जी सांसा मूसा से। तो चलिए अंकुश जी, आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी।

4FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यदि आप इस कार्यक्रम में बने हुए तो बने रहें और एक एक करके सबकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे कई मैसेज पहुँचे हुए कि हमारा और हमारा नहीं बजाते हैं, कई श्रोतागण की मैसेज रिपीट हुए हैं, तो चलिए एक ही करके सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगली गाने की फरमाइश करते हैं पूरी, और इस गाने की फरमाइश करते हैं महमूद जी केरला से, और गाने का बोल देते हैं, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। बिल्कुल आप जो कहें वो सत्य है। और आगे मैसेज कई पहुँचे हुए लिखा गया है कि सनसर हमारा फरमाइश नहीं बजाते हैं, तो बिल्कुल बोलते रहें कि एक एक करके फरमाइश हम प्ले करेंगे और प्ले हो ही रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सब्र करें, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। रंजन जी फिलहाल महमूद जी के गाने को प्ले करते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कि सर हमारा भी, तो बिल्कुल एक एक करके बोलते रहें कि सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा, जितना हमें समय मिला है उतना में। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एम छीम 94.4 FM पे। इस चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कि हमारा गाना बजा दीजिए, हमकी नींद लगाता। चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी कर देते हैं। काफ़ी पहले ही मैसेज किए हैं और इस मैसेज को पहुँचाती हैं आशा चौहान विलेज सराफरा परसौनी से और गाने का बोल देती हैं, जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाए। सुनाना चाहती हूँ आपको रेडियो फ्रेंड से अनामिका जी, सविता जी, काजल गुड़िया, रोशनी ब्यूटी, निशा, शबीना, रुबीना, शफाक, सलेहा, सुफिया, हिना, हजरा, खुशी, संतरा, शब्बा, तब्बू और वीरेंद्र भैया, लवली भाभी और समीर भैया, शाहिल भैया, इरफान भैया, कमरान भैया, पंकज भैया और गुलाम भैया, अतीश भाई, एजाज भाई, राम कुमार पांडे और राघव जी और दिलीप भैया, नौसाद भाई, श्यावन शर्मा जी और उपेंद्र भाई, सनोज भाई, एके पांडे, रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए कोई छूटा नहीं है, लगभग सब कोई का नाम शामिल हो ही गया है। अब आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो एम जी एम 94.4 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग। रेडियो रामछिम 90.4 FM पे सुन रहे थे हम सभी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया कि थैंक्स भैया, आपको धन्यवाद है रेडियो रामछिम सुनने के लिए। आशा चौहान, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं और मुझे गाने में शामिल करने के लिए दिल से शुक्रिया। दिलीप राम जी मैसेज करते हैं, स्वागत है आपका भी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर जी हमारा सॉन्ग नहीं बजेगा क्या? और इस मैसेज को करती हैं स्वीटी शर्मा। तो आज तो नहीं बज पाएगा क्योंकि काफ़ी लेट कर दिए हैं आप, और हमारे पास बहुत कम समय बचे हुए हैं और कई मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं जो गाने के फरमाइशों को लेकर श्रोतागढ़ अपने गाने के लिए इंतज़ार में लगे हैं। तो आज नहीं कल कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, हम भी आ गए हैं आपके कार्यक्रम में, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, रोहित जी देहरादून से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और यहाँ पे लिखा गया है कि गुड इवनिंग सर, 5-6 दिन बाद आज हम भी जुड़े हैं आपसे, और सुनो जी क्या हाल है? तो बिल्कुल बढ़िया है। और इस मैसेज को करते हैं मंकेश सहनी भैरवगंज वेस्ट चंपारण से, और बिल्कुल बन रहे हमारे साथ, गाने का बोल भी देते हैं। तो आज तो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि कम समय बचे हुए मेरे पास और आगे कई गाने के फरमाइश पड़े हुए हैं, तो आज नहीं हो पाएगा, कल कोशिश रहेगा। आगे मैसेज है और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं सफरोज अली की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है बाय बाय मिस यू गुड नाइट कुमार सानू की आवाज़ में। तो चलिए आपकी वो फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97-7-14-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: आप सब और कार्यक्रम चल रहा है, इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज है और आगे कई गाने के फरमाइश पहुँचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि हारे हारे हारे हम तो दिल से हारे। इस गाने के फरमाइश करती हैं निशा पांडे, और तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं। आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो 96.4 FM पे।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसीएम 90.4 FM पे सुन रहे हैं। हारने के बाद ही जीत मिलती है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि और इस मैसेज को करते हैं रंजन कुमार तमकोही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और गाने का बोल देते हैं तेरे इश्क मनाचेंगे। तो चलिए आपकी फरमाइश अंतिम प्ले करते हैं और इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग सर निशा जी का, और इस मैसेज को करते हैं सफरोज अली, बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ था। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि गुड नाइट, चलिए गुड नाइट। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा तो आज तो नहीं हो पा रहा है, कल कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा और लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर, चलिए आपको धन्यवाद है निशा पांडे। और आगे बढ़ते हैं अगले गाने के फरमाइश प्ले करते हुए, इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में अगले सप्ताह। आप सब बने रहें, इंजॉय करें अंतिम गाने के साथ रेडियो रेमछिम 90.4 FM पे, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: आप चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 92। जी हाँ, 9852 78 8291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों, इसी के साथ करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। और आप सभी के लिए मेरी तरफ से, जब तक सब कोई जुड़ रहे हैं तब तक के लिए आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग और मूवी है कौन है जो सपनों में आया। और गाने के बोल हैं, अगर दिल कहे कि हमें तुमसे मोहब्बत है। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग, अगर दिल कहे कि हमें तुमसे मोहब्बत है, और मूवी है कौन है जो सपनों में आए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमें ज़रूर बताइएगा कि गाना आपको कैसा लगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं न्याय पर अब बीरई बसंत कुमार ठाकुर, पोस्ट प्रमोद कुमार साहू, पप्पू ठाकुर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि हाय मैम नमस्कार, इरशाद मास्टर भारती जी, ओपनिंग के शुरुआत बहुत लाजवाब गाना से इरशाद मास्टर ग्राम धनु से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि आपकी पसंद आपको प्यार भरा आदाब, और मुझे भी गाना सुनना है। और मैसेज करने वाले हैं उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी और शामसुल कमर राही जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तम सोनी जी, और लिख रहे हैं कि जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, और अगर दिल कहे कि हमें तुमसे मोहब्बत है, ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। और लिख रहे हैं कि रिश्तों में भरोसा इतना हो कि सच पूछने की ज़रूरत ना पड़े, और साहस इतना हो कि झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और अगली फरमाइश जो कि हमारे पास पहुँची हुई है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, मैं अनीस यादव, विलेज डुमरा, यदवंशी टोला, डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार से हूँ, और खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट पटना में पढ़ता हूँ। और लिख रहे हैं कि ज़िंदगी में हर दिन नई बहार आए, हर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आए, और दुआ है मेरी सबके लिए दिल से हर कदम पर खुशियों का साथ आए, तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं। और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, और गाने के बोल हैं मैं जितना तुम्हें देखूँ मन ये ना भरे। और इसी के साथ हमारे पास जो लिख रहे हैं कि मुझे सुनवाना है ये खूबसूरत गाना मनीष यादव, सतीश यादव, नीतीश यादव, रौनक यादव, अंकित यादव, अंजलि यादव और नंदिनी यादव, मिष्टी यादव और मिल्की यादव को डेडिकेट है, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आपका गाना प्ले कर रही हूँ, एंजॉय कीजिए सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे ही
2: हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: ब्रेक के बाद जो अभी अपने हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हैं, उनके एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852-78-82-91। और यदि कॉल करना चाहते हैं तो कॉल के लिए नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलेंगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि विजय कुमार कुशवाहा रसिया की सतारो शहर से हैं और मैं आपका प्रोग्राम प्रतिदिन सुनता हूं और बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, हसमत अली अंसारी, चैनपुर सिवान से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती जी, और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, और लिख रहे हैं कि एक लड़की का स्टेटस देखकर मेरा तो दिमाग ही सुन हो गया। उसने लिखा था, इश्क अधूरा है तो अधूरा ही रहने दो, अगर पूरा है हुआ तो साला बर्तन धुलवाएगा। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
9: हेलो, नमस्ते मैम।
8: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: जी, मेरा नाम सुरभि कुमारी है।
8: हाँ जी, और कहाँ से हैं आप सुरभि जी?
9: मैं गोपालगंज से बोल रही हूँ।
8: अच्छा जी, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
9: मस्ताना मौसम है।
8: और गाना डेडिकेट भी है
9: आपको है और जितने लोग सुन रहे हैं सभी को।
8: आप रेडियो रिमझिम से पहली बार जुड़ रही हैं?
9: नहीं तो पहले भी जुड़ी थी इससे।
8: अच्छा, लगता है मेरी आपसे बात नहीं हुई है।
9: बरौर कॉल की थी मैं आपसे।
8: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, आपका गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम में 90.4 FM में। रेडियो रिमझिम में कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
9: जी।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मस्ताना मौसम है, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते नमस्कार सागर आलम अंसारी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जय श्री राम अनूप कुमार विलेज निरंजन से, और क्या हाल है आपका, अभी पुणे में हूँ और सॉन्ग सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपका भी गाना प्ले होगा। लेकिन इससे पहले हमारे पास यहाँ इंस्टाग्राम के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी कैसी हैं, मैं भी जुड़ गया हूँ और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और मैं देहभत्ता से उषा हूँ और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी सॉन्ग सुनना है, सुना दीजिएगा। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हाँ कहीं दूर चले जाएं हम, और प्लीज़ गाना सुना दीजिएगा। तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं बिना देरी की और इंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नमस्कार जी, मैं कररिया से मनोज शर्मा पिछले 1 साल से रेडियो रिमझिम में जुड़ा हुआ हूँ, कृपया फिल्म अन्नाड़ी का गाना सुना दीजिएगा। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और उससे पहले हमारे पास यहाँ जो कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
8: जी, नमस्कार जी।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: जी मुझे एक गाना सुनना है।
7: जी नाम भी बता दीजिएगा अपना।
8: मोहित कुमार।
7: और कहाँ से?
8: करौलिया से।
7: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
8: आज गाना सुनवा दीजिए, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम जो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं।
7: और गाना डेडिकेट भी है
8: जी आपको और सुमन देवी, रेखा देवी को और पूरे रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी को।
7: ओके जी, तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि इंस्टाग्राम के द्वारा पहुँचा, और लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, और ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैसेज करने वाले हैं उषा जी, तो इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम दिल फेक आशिक हैं, हर काम में कमाल कर दें, जो वादा करे वो पूरा हम हर हाल में कर दें, क्या ज़रूरत है जानू को लिपस्टिक लगाने की। और लिख रहे हैं कि हम चूम चूम के ही होठ उनके लाल कर दें। और भारती जी नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, ये भाई कौन सा कररिया से जुड़ते हैं बताएं आप। और दिलीप राम, हम भी उसी जगह से हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, रंजन कुमार तमकोही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, और हमारा भी हाजिर लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो भारती जी नमस्कार, हम भी शो से जुड़ गए हैं, हाजिर लगा दीजिएगा, मैं रितेश कुमार फ्रॉम सिवान से हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि अनूप कुमार जी की तरफ से और विलेज निरंजन से के रहने वाले हैं, और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने के बोल हैं दिल दिल का क्या करे साहिब, और पुराना सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
3: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 62112 पे।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हर हर महादेव, भारती जी आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और मैं भी जुड़ गया हूँ, तो हमें भी आज गाना सुनना है, वॉइस भेज दिया हूँ, चला दीजिएगा कुछ, मेरे दोस्त हैं उनका नाम लेना चाहूँगा, प्रीति की, प्रीति, प्रतीक्षा जी, सानिया जी, रिंकू जी और राधिका जी, प्लीज़ मैम चला दीजिएगा हर हर महादेव शंभु यादव पुलिस लाइन से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा। उससे पहले हमारे पास बहुत सारी फरमाइश पहुंची हुई है, और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, आप कैसी हैं, और मैं भी जुड़ गया हूँ और साजिद अंसारी मीरगंज से, और मुझे गाना और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगली जो मैसेज पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम? तो मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, मैं सुबोध साहू बेगूसराय से, गाना सुनना है और गाने की लिंक पहुँची हुई है। तो चलिए यहाँ पे एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

और हमारे पास जो अगला फरमाइश पहुंचा हुआ है इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचा हुआ है, तो चलिए बिना देरी किए लिख रहे हैं कि नमस्ते जितेंद्र कुमार बरौली से, और मुझे भी गाना सुनना है, और गाना है इन्ना मैं चाहूँ तुम्हें कोई किसी को ना चाहे, और प्लीज़ गाना सुना दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग। गाना है राज मूवी का।

तो अभी हम लोग ने सुना जितेंद्र जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग इतना मैं चाहूँ तुझे कोई किसी को ना चाहे, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, गोल्डन टेलर हम भी जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं कि हम पहले का वॉइस भेजे हुए हैं, बजा दीजिएगा। और इसी के साथ जो हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि प्लीज़ मैम बजा दीजिएगा। यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं भारती जी गा ही रही हैं तो थोड़ा खुलकर गाइए, अच्छा लगेगा। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती मैम, का हाल बा, मैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और बजा दीजिएगा मेरा भी गाना। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं नमस्कार भारती मैडम, हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिर लगा दीजिएगा। और इसी के साथ जो हमारे पास अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो लिख रहे हैं प्रमोद कुमार साहू ग्राम बिरई जिला बलोद छत्तीसगढ़ से, और मुझे गाना सुनना है और सोनू निगम की आवाज़ में, और गाने के बोल हैं जिंदगी की राहों में रम जो गम के मेले थे। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: खुला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
5: प्रसाद क्लिनिक।
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि केरला से जुड़ चुके हैं MD मोहम्मद, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि रेडियो रिमझिम की मधुर आवाज़ है आप, और सुरों की महकती खुशबू का अंदाज है आप, भारती मैम को सादर प्रणाम, और मेरा भी गाना सुना दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और दिलीप शर्मा पठरा टोला से जुड़े चुके हैं, तो इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश है कॉल के माध्यम से पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
8: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नमस्कार, कौन सी मूवी का? और गाने के बोल क्या है? और गाना डेडिकेट भी है। वैसे आपका नाम क्या है? अच्छा जी, चलिए फिर आपका गाना प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। जी अभी बज रहा है, सुनिए आप। ओके।

0: अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मूवी है सिर्फ तुम, और गाने के बोल थे ऊपर वाला सबके साथ है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि भारती मैम हमारा गाना कब बजेगा, और गाना है क्या मौसम आया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना बजेगा पर थोड़ा वेट कीजिए। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो अगला मैसेज पहुँचा हुआ है शंभू यादव जी की तरफ से, जो कि पुलिस लाइन के रहने वाले हैं, और इनके तरफ से वॉइस माध्यम से मैसेज पहुंचा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
1: हर हर महादेव भारती जी और सोनी जी, मेरा नाम शंभू यादव, घर बस जिला भागरखाप, जिला गोपालगंज बिहार, पुलिस लाइन से, और इस टाइम मैं राधिका गारमेंट में अपना सर्विस दे रहा हूँ। राधिका गारमेंट की ही तरफ से कुछ मेरे दोस्त हैं जो गाना सुनना चाहेंगे। गाने के तो बोल है दुनिया बनाने वाले, काहे के दुनिया बनाई क्या तेरे मन में समाई। कुछ हमारे दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जो हमारे प्रोपराइटर हैं दिलीप कुमार कुशवाहा जी, रंजन जी, छोटू जी, हमारे प्रिय
2: सारे गामा कारवा
1: बीटू बाबा
2: डिजिटल ऑडियो
1: जो इस टाइम गोपालगंज में है, भूर मास्टर जी और राघव जी भैया हमारे जो बंजारी मोड़ पे हैं पुलिस लाइन के सामने वो, और कुछ हमारी और साथी हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, प्रीति जी, प्रतीक्षा जी, सना जी, रिंकू जी और प्रियंका जी। तो हम सब दोस्त मिल के ये गाना सुनना चाहेंगे। तो प्लीज भारती जी, हर हर महादेव, और हमारे जितने भी रेडियो रिश्ता सुन रहे हैं सबको हमारे तरफ से हर हर महादेव, और आप हमारा गाना प्लीज चला दीजिएगा 1:30 बजे से पहले पहले, क्योंकि हमें रोटी खाने जाना होता है। तो प्लीज चला दीजिएगा हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: तो चलिए बिना देरी किए इनके गानों को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: और यहाँ सब मुझे की तरफ से फीडबैक पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फीडबैक।
1: जी हर हर महादेव, बहुत बहुत थैंक यू, बड़े बड़े दिल से थैंक यू। और हमारे मिठू जी छूट गए थे, उनका भी नाम लेना चाहूंगा, हर हर महादेव गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हर हर महादेव।
0: और इसी के साथ बढ़ेंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ और फिर मिलते हैं आपसे छोटे सी ब्रेक के बाद।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
8: ओम नमः शिवाय।
9: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
8: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
9: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
9: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
9: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
8: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
9: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
8: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
9: बोलबम हर

0: छोटे से एक ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और आप सबको मैं एक और बात बता दूं जो अभी अभी हमसे जुड़ रहे हैं नए कि योर वॉइस योर चॉइस का एक रूल है जो कि हफ्ते में आप एक बार ही मैसेज कर सकते हैं, और आप जिस दिन आप गाना सुनते हैं फिर उसी दिन अगली बार गाना सुनिएगा तो आप दोबारा मैसेज नहीं कर सकते, उसके अगले दिन नहीं सुन सकते। तो आप अपने दिन पे ही मैसेज करें ताकि मुझे परेशानी ना हो गाना सुनाने में। और इसी के साथ हमारे पास जो अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और गोपाल राय जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो अगला मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहे हैं कि इरशाद मास्टर दुनिया बनाने वाले सुपर सॉन्ग। और इसी के साथ हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ जी लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून राधे राधे, सुरीली आवाज़ कोयल और मैम भारती जी सादर नमस्कार। आज मुझे रिमझिम रेडियो गोपालगंज में जुड़े 2 दिन हो गए हैं और आप भारती जी मैसेज बराबर से आपका शामिल करती हैं और उसके मनपसंद पूरी करती हैं और हमें निराश नहीं करती हैं, और मेरा सॉन्ग ज़रूर चलाएं और गाने की बोल पहुंची हुई। और लिख रहे हैं कि मैं बसंत ठाकुर, सरोज भाई ठाकुर और इस राज पप्पू ठाकुर, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप सभी को मैं बता दूं कि कल ही आपके गाने को प्ले किए थे और अभी मैंने बताया कि आप अगली शुक्रवार को ही अपना गाना सुन सकते हैं, तो प्लीज़ आप अपने दिन पे ही अपना गाना सुने। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हुस्नियार मलिक कोशिश करके बजा दे गाना और मेहरबानी रहेगा। हेलो मैम प्लीज़ बजा दीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनका वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो हाय आदाब सलाम, दिस इज हुस्नियारा मलिक फ्रॉम जादवपुर से, लेकिन अभी जादवपुर में नहीं। एक्चुअली मैम एक सॉन्ग सुनना है, प्लीज सुनवा दीजिएगा आशा घोसले के आवाज में। सॉन्ग का बोले हर घर

0: सजना। और यही सॉन्ग सुनना है, प्लीज सुनवा दीजिएगा। और आपको सुनवाना चाहूंगी सबसे पहले और सभी दोस्तों को, और मेरी बेटी है और अपने हस्बैंड को और सभी दोस्तों को, और मेरी भतीजी है फलकनाज। तो फिर कभी मिलेंगे, अभी टाइम नहीं है, तो जल्दी से सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा और फिर कभी मिलेंगे। बाय बाय, हुस्न आराम मलिक।
1: तो इनकी तरफ से बहुत ही खूबसूरत सी गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अभी हम लोगों ने सुना है बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग हुस्न ए आरा मलिक जी के साथ और उनकी तरफ से फीडबैक मैसेज पहुंच चुका है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
1: थैंक यू, शुक्रिया मैम सॉन्ग प्ले करने के लिए। और ऐसा बात नहीं है कि सॉन्ग नहीं प्ले करती है, और सबका सॉन्ग प्ले करती है, अच्छा लगता है। और मेरा भी सॉन्ग प्ले की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बदले में आइए बिरयानी बना रहे हैं, खा लीजिए सॉन्ग प्ले करने की खुशी में, ठीक है। और मैम फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपकी आवाज़ सुनेंगे, ठीक है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे हैं अपने घर तो काम में थोड़ा बिजी रहते हैं ना, इसीलिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन टाइम मिलता है तो निकाल कर जरूर सुन लेते हैं। बाय।
0: और हमारे साथ हुस्न ए आरा मलिक जी जुड़ी, अच्छा लगा। और अभी तो मैं बिरयानी नहीं खा सकती क्योंकि सावन चल रहा है और सावन में हम सब नहीं खाते, और कोई नहीं, आप खाइए और एंजॉय कीजिए। और इसी के साथ जो हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी कॉल करके कॉल कर सकते हैं क्या, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, और लेकिन आप कहीं एक ही जगह जुड़ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे या तो कॉल पे, इसीलिए नहीं कर सकते। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, मैं जलंधर पंजाब से जुड़ गया हूँ और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सावन में लड़कियाँ हरी साड़ी पहनकर इतनी रील बना रही हैं कि फेसबुक खोलो तो लगता है सीधे घास भूस के मैदान में आ गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सन्यासी रंजन जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश जो कि कॉल के माध्यम से पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
2: हेलो जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। हाँ जी, कैसी हैं आप?
2: हम बढ़िया हैं, आप कैसे?
0: मैं भी ठीक हूँ।
2: मुझे गाना सुनना है।
0: बता दीजिए कौन सा गाना।
2: जुदा अपने दिल भर से होने लगा है, इसे नहीं।
0: और गाना डेडिकेट भी है।
2: हाँ, सबसे पहले आपको मेरी बेटियाँ देती
0: हैं जी,
2: है सब
0: कुछ। ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग और जुदा अपने दिलबर से होने लगे हैं। और इसी के साथ हमारे पास जो कि यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। सोचता हूँ काम कर कर के रिकॉर्ड तोड़ दूँ, कम वक्त सैलरी देख के ख्याल बदल जाते हैं। और भारती जी हुस्नियारा जी की आवाज़ काफ़ी दिनों के बाद आज सुनने को मिली है और दिलीप राम दिल्ली से। तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी इरशाद मास्टर व्हाट्सएप पर फरमाइश कर सकते हैं क्या, बताइए। तो नहीं, क्योंकि आपकी फरमाइश मैंने मंगलवार को प्ले किया था। तो क्योंकि आपकी फरमाइश मैंने मंगलवार को प्ले किया था तो आप फिर से मंगलवार को ही आप गाना सुन सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पास जो कि यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, गोल्डन टेलर हमें भी गाना सुनना है और जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी फरमाइश वॉइस के माध्यम से पहुँची हुई है, तो चलिए सुनते हैं वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
1: गुड आफ्टरनून मैम, हम गोल्डन टेलर तिनसुरिया से, हमको ये गाना सुनना था जो बेटा फिल्म का है। गाने का बोल है सैया जी के।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर कम

0: आरआई कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।
6: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। यदि आप हमसे इस शो में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9852878291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए आगे की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैडम जी, भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था, लेकिन ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था, कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था, और हमने खो दिया सब कुछ वहां जहां कुछ पाना नहीं था। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और जुड़े हुए हैं दीपक मुंबई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास दिनेश मिश्रा जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी क्या बोले, कौन से रूल्स और आए हैं, क्या रोज शो में नहीं जुड़ सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप रोज शो में जुड़ सकते हैं, लेकिन रोज शो में जुड़ सकते हैं और रोज सभी के गाने सुन सकते हैं, लेकिन आप अपनी फरमाइश उसी दिन कर सकते हैं जिस दिन आपका दिन हो फरमाइश करने का, सेम वही रूल है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला फरमाइश है जो कि पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं भारती जी मैं भी जुड़ गया हूँ, और दिलीप शर्मा पटरा टोला से, और गाना सुनना चाहते हैं, जो कि लिख रहे हैं मेरा भी गाना सुना दीजिएगा, और गाने की लिंक यहाँ पहुँची हुई है जो कि गाना है कल्पना जी की आवाज में, ये गो चुम्मा लेला राजा। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये गाना।

अभी हम लोगों ने सुना दिलीप जी की तरफ से प्यारा सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो लिख रहे हैं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, हम सुनील कुमार पश्चिमी चंपारण अरेराज बाबा की नगरी से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो गुड आफ्टरनून भारती जी, राजसो लाल सिंह नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं कि दूर हैं आपसे तो कोई गम नहीं, दूर रहकर भूलने वाले हम नहीं, रोज मुलाकात ना हो तो क्या हुआ, आपकी याद आपकी मुलाकात से कम नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ और लिख रहे हैं यहाँ दिलीप जी की यही कहते हैं कि सोनू भाई शादी कीजिए। और इसी के साथ हमारे पास जो अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं और मुंबई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सदाम जुड़े हुए हैं, तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो अगली फरमाइश पहुंची हुई है लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैं सुनील कुमार गोपालगंज से, और हमारे गाने की लिंक पहुंची हुई है, तो प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। और गाने के बोल हैं ओढ़नी के रंग हरिहर बा, तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे ये प्यारा सा सॉन्ग खेसारी लाल की आवाज़ में।

0: बढ़ा।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97707065575।
5: ठक ठक।
6: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना।
6: अरे ना देव,
8: ऐसे ही और सदा बाहर वीडियोस देख,
6: पर कोनो जचल होना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
9: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
11: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी प्लीज़ मेरा भी गाना बजा दीजिएगा, और प्लीज़ तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और गाना आपका भी बजेगा। उससे पहले हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो
12: जी,
11: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: कृष्णा प्रसाद जी शेरवा से।
11: हाँ जी, कैसे हैं आप?
12: अरे हम ठीक है, ना सुनाइए।
11: हम सभी ठीक हैं। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
12: आज हमको सुनना है गाना क्या बोलते हैं, हाथी मेरा साथी।
11: और गाने के बोल?
12: गाने का बोल होगा वही या भूल जाते हैं आपसे क्या है संसार, नफरत की दुनिया छोड़कर प्यार की दुनिया में सुखी रहना मिलेगा। हेलो
11: जी जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
12: गाना तो सबको सुनाना है, जितने श्रोता लोग हैं आप सुनेंगे। सोनी मैडम नहीं गा रही है
11: जी? ये तो मैं नहीं बता सकती, ये हमारी मैनेजमेंट बताएगी।
12: अच्छा जी,
11: जी
12: यही सुना दीजिए।
11: ओके, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैम आप भी बहुत अच्छी होंगी। रेडियो रिमझिम 90.4 FM के द्वारा एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ शुरुआत हुई थी और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ क्लासिकल एवरी ग्रीन हिट गानों की। अभी तक बहुत ही अच्छी फरमाइश आई है और अच्छे अच्छे गाने की फरमाइश करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और लिख रहे हैं कि नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार हाथी मेरे साथी फिल्म का यह गाना। मैं रेडियो रिमझिम के स्टूडियो से इस गाने को बहुत बार सुना है और सुनते ही वाइल्ड लाइफ का एक नाम याद आता है, द डिज्नीलैंड द लीजेंड स्कॉर्फेस। और जैसे वह अपना जीवन बिताया वाइल्ड लाइफ की दुनिया में, उसका कंपेयर किसी के साथ होता है तो उसको एक नंबर पर रखा जाता है। और ठीक वैसे ही हमारे देश की जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट और हम्बल हमेशा रहता है। और इस फीडबैक को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनका भी जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी, और सोनू सऊदी अरबिया से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो कि अगली फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि हेलो मैडम जी, राम राम, मैं पगवारा पंजाब से, मुझे एक गाना सुनना है, तुझे प्यार से देखने वाला और तुझे अपना समझने वाला, और ये गाना मुझे अपनी वाइफ रिंकी सोनी को डेडिकेट करना है, और प्लीज़ मैम बजा दीजिएगा ज़रूर। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज के बाद और आपसे मिलेंगे फिर से दोपहर न्यूज के बाद। तब तक एंजॉय कीजिए गाने को और आप सभी भी थोड़ा आराम कर ले और घूम फिर।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए, और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9939365923।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
11: And with that, we end the midday news.
12: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
13: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है। और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
12: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
13: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
12: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
13: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
12: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कम्प्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
14: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
12: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
15: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
12: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
16: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
12: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार GI टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
17: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
12: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
18: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
12: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
19: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
20: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
21: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
22: मैं बनूंगा।
20: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
21: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029 94921 पे,
20: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
21: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
22: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
23: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
24: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
25: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
26: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97746164।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555485507 या 91629335388।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन।

0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री ओपीडी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: All right.

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँच चुके हैं और जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वन सेकेंड, व्हाट ए मास्टर पीस चॉइस, और लिख रहे हैं कि एक दिल है सॉन्ग, और थैंक यू फॉर गुड चॉइस। तो गाना आपको अच्छा लगा ये सुन के, मुझे अच्छा लगा, और आपका भी फिर से स्वागत है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हमारी बुराई मशहूर है ज़माने में, फिक्र वो करे जिनके गुनाह पर्दे में है। और रंजीत कुमार लकड़ी दरगाह से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी, मेरे पति के लिए गाना है और गाना सुनना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश है जो कॉल के माध्यम से पहुँची हुई है, तो चलिए बिना देरी किए इनके फरमाइश को लेंगे और सुनेंगे क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू। दिल क्या हो रहा है आपका?
0: कुछ नहीं, बस अभी लंच करके आ रही हूँ आप सभी के बीच फिर से।
1: गाना सुनना है
0: जी, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको। और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सबसे पहले आपको और सुनना, सभी श्रोताओं को।
0: अच्छा, तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए नीलकमल जी का ये प्यारा सा सॉन्ग सभी के साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल के इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

तो अभी हम लोगों ने सुना नीलकमल जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग लेकर तोहरे के पापा कहा था। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि विजय कुमार कुशवाहा रसिया से सरा तो शहर से, और आपका प्रोग्राम प्रतिदिन सुनता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी, नमस्ते, हम सोनू प्रजापति नासिक से, हम भी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिर लगा दीजिएगा। भारती जी नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ और मैं रोहित देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो मैम नमस्ते, मैं अभिषेक सिंह शशांक पुस्तक सदन तीन फेरिया बाजार कुशीनगर से, और गाना सुनना है। और हेलो मैम मस्त सॉन्ग है, बजाइएगा एक बार ज़रूर। तो जी आपका भी सॉन्ग प्ले होगा। और इससे पहले हमारे पास जो कि फरमाइश पहुंची हुई थी जो कि लिख रही है, मैडम जी मेरे पति के लिए गाना है दिल पे चलाई छुरिया, और बजाइएगा प्लीज़, और मैं दिल्ली मोहन गार्डन से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग दिल पे चलाई छुरिया।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजिम 90.4 एफएम। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, जो कि हमारे पास इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, और दुबई से विकास कुमार चौधरी, और आप गाना सुनाते रहिए, बहुत अच्छा गाना बज रहा है, तो आप इन्जॉय कर रहे हैं, ये सुन के अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, शहाबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा से, और आज मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। और हेलो भारती जी, हमारा मैसेज प्लीज़ चेक कीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी मैसेज शामिल कर लिए हैं। और इसी के साथ हमारे पास जो अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहा है, मैडम जी बहुत बहुत शुक्रिया, एक और बजा दीजिए। तो नहीं, एक दिन में आप एक ही गाना सुन सकती हैं, और आज सैटरडे है, आपने अपना गाना सैटरडे को सुना, तो फिर अगली बार अगले सैटरडे को ही सुनिएगा। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि सोनू प्रजापति नासिक से गाना सुनना चाहते हैं, और लिख रहे हैं कि लिंक भेज रहा हूं, और भारती मैम आपको सुनवाने का है, और सोनी मैम को, और रेडियो रिमझिम के सभी दोस्तों को सुनवाना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और इनकी गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि गाने के बोल हैं, मत भुलैया परदेसी अपन गाँव। तो चलिए, ये खूबसूरत सा सॉन्ग सभी के साथ इंजॉय करते हैं।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
11: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
10: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
11: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
10: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
11: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
12: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
13: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
14: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं, भारती मैम क्यों गाना काटी, और हम रिमझिम के पुराने लिसनर हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आपका गाना ही नहीं सभी के गाने काटे जाते हैं, और आपको तो पता ही होगा 3 से 3.5 से 4 मिनट का गाना सुनाते हैं। और इसी के साथ हमारा पास अगली फरमाइश है जो कि कॉल के माध्यम से पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
15: गाना सुनना है कमर में साइड साइड रखे साइलेंट बचपन सॉन्ग।
14: कौन सा सॉन्ग?
15: ये साइलेंट का बचपन सॉन्ग बोला है कि साइलेंट कमर में साइड साइड रखते नहीं ना, अगर
14: कमर में दागी भलवा।
15: जी जी जी
14: ओके। और गाना किसी को सुनाना भी है?
15: गाना तो रेडियो में जितने सब लोग सुनाना है सब लोग का।
14: ओके तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए। जी जी रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

तो अभी हम लोग ने सुना खेसारी लाल जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग कमर में दागी भिलवा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं अभिषेक सिंह और शशांक पुस्तक सदन तीन फेरिया बाजार कुशीनगर से हूँ और मुझे गाना सुनना है और गाना है बजाओ डीजे डांस करे नील्स कमल सिंह की आवाज़ में। और गाना सुनना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और ऐसा लग रहा है दोपहर न्यूज़ के बाद सभी को भोजपुरी गाने सुनने का मन किया है, तो कोई बात नहीं, चलिए आपको मैं भोजपुरी ही गाना सुनाती हूँ। और बजाओ डीजे डांस करें, गाना एंजॉय करिए सभी के साथ नील कमल की आवाज़ में।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97-7-14-86-164।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमा जेड पर।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
1: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्लीज़ आप बताइए कि मेरा मैसेज आपके पास गया है या नहीं, और लिख रहे हैं कि मैं आपका नंबर गूगल से निकाला है और सेटेलाइट से कनेक्ट करके कभी कभी आपको शो सुनता हूँ, और प्लीज़ मेरा भी पसंद का एक गाना सुना दीजिएगा। और यहाँ हमारे पास दूसरा मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, नमस्कार दिलवाले, मुझे गाना सुनना है और बिटिया रानी का जन्मदिन है शिवानी का, और आशीर्वाद दीजिएगा मैडम जी, और एक गाना सुना दीजिएगा बर्थडे वाला गाना। और बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपकी बिटिया रानी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं रेडियो रिमझिम की पूरी टीम की तरफ से। और चलिए बिना देरी के आपकी बिटिया रानी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करते हैं, बर्थडे वाला

0: तो अभी हम लोगों ने सुना हैप्पी बर्थडे वाला बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और शिवानी जी का बर्थडे था। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो अगला फरमाइश पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम। हमारे तो हाल ठीक बार हुआ, बताएं रुआ कैसन बानी। ऐसा कोनो बात नहीं है, फोन तो उठ गई ला ना अभी।
1: गाना सुना दो।
0: बता दी कौन सा गाना।
1: कर्मा फिल्म के
0: गाना के बोल बता दी। और गाना क्यों के सुना हूँ के बा।
1: सबसे पहले आपके ओकर बाद जितना सभी फिल्म का सब गाने के
0: मौसम तो ठीक बाबे। देशभक्ति सॉन्ग की मतलब एमे के दुगो बाबे, ऐसा नाम तेरे लिए कि आए वतन तेरे लिए। ओके ओके, चलिए फिर और गाना प्ले कर दे लानी, एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दीदी जी नमस्कार, ग्राम चमरुआ जिला संभल उत्तर प्रदेश से ब्रिजेश मिस्त्री, बीवी कविता, बेटी वैष्णवी, बेटा दिव्यांशु भाई कृष्ण भीष्मपाल से परिवार 2 महीने के बाद जुड़ रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं गंगा मैया में जब तक यह पानी रहे, मेरे सज्जन की जिंदगी रहे। दीदी जी जरूर सुनवा दीजिएगा और प्लीज़ रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर इंतज़ार कर रहे हैं और बारिश हो रही है, हम दिल्ली आए हुए हैं और बारिश में भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और मोबाइल ऐप पर गाना जरूर भेज दीजिए, शायरी लगाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्ते, रहीम आलम नरकटिया बाजार से, योगेश कुमार फैशन टेलर, सजाद आलम बेंगलोर मॉडर्न लेडीज टेलर, प्रमोद प्रेमी पठान टोली। और एक बोलबम का गीत सुना दीजिएगा खेसारी लाल की आवाज़ में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भक्ति सॉन्ग मैं नहीं बजा सकती, आप कोई और गाने की फरमाइश करें तो मैं बिल्कुल प्ले कर दूंगी। और इसी के साथ हमारे पास जो कि अगला मैसेज और अगली फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि भारती जी मैं शहाबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद से और हरियाणा का रहने वाला हूँ और मुझे गाना सुनना है। गाने के बोल हैं तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: और यहाँ हमारे पास शहाबुद्दीन अंसारी जी की तरफ से फीडबैक का मैसेज पहुँच गया, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनका मैसेज।
1: सॉन्ग प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उस टाइम वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बैकग्राउंड का आवाज़ बहुत ज़्यादा था, इस टाइम कम हो गया है। सॉन्ग प्ले करने के बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा लाइन है कि इन आँखों को देखने के बाद ये शहर कौन देखेगा, इन आँखों को देखने के बाद ये शहर कौन देखेगा। तुम लहरों की हो दरिया कौन देखेगा, तुम लहरों की हो दरिया कौन देखेगा। और तुम खूबसूरत हो और खूबसूरत से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, और तुम्हें देखने के बाद ताजमहल कौन देखेगा।
0: तो बहुत ही खूबसूरत लाइन भेजे हुए थे। और यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि भाई साहब बहुत ही जल्दी में है और लिख रहे हैं कि देवी जी आप ये लिख रहे हैं देवी जी आप ये वाला सॉन्ग प्ले क्यों नहीं कर रही हैं। तो हमारे भाई साहब बहुत जल्दी में हैं, चलिए कोई नहीं, इनका गाना बहुत जल्दी प्ले कर रही हूँ। और लिख रहे हैं कि अपना नाम भी बता दीजिएगा प्लीज़, और आपका गाना प्ले करने जा रही हूँ। और लिख रहे हैं गाने के बोल हैं चांद तारे फूल और शबनम। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत ही कम बचा है, क्योंकि हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:51 हो रहा है। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज अभी भी आ ही रहे हैं और लिख रहे हैं कि हाय मैडम जी, नमस्ते, गाना सुनना है, और गाने की बोल है यार बदल ना जाना मौसम की तरह, और नदी पे है चंदन कुमार, और बजाइए कि नहीं, और प्रदीप कुमार, तीन दोस्त हैं और नदी पे हम लोग। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

और यहाँ हमारे पास इसी के साथ अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि बोल लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, देर हो जाती है और मैसेज करने वाले हैं मुस्तफ़ा सऊदी अरबिया से, तो कोई बात नहीं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी हाजिर लगा दीजिएगा, कोटा राजस्थान से कपिल जी जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगला फरमाइश जो कि पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि प्लीज़ मेरा गाना बजाते हुए जाइएगा, और गाना है गंगा मैया में जब तक पानी रहेगा मेरे साजन की जिंदगानी रहे। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ही ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ और लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्ते, रहीम आलम नरकटिया बाजार से, और मुझे भी गाना सुनना है और गाने की भूल जो कि पहुंचे हुए हैं, लिख रहे हैं दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है। तो बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे, और यहाँ हमारे पास सभी के तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच गए हैं, तो चलिए इस गाने को इन्जॉय करते हुए सभी को करते हैं अलविदा, मतलब विदा, फिर मिलेंगे आपसे कल।

तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से लूँगी विदा, और सुनते रहें ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-89693।
11: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042-34003, 62042-34003।
14: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम, हर हर महादेव।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम।
5: सुनो दिल।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज। संपर्क

0: 0001।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
3: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।
4: रेडियो रिमझिम,
3: सुनो दिल से।
5: 3, 2, 1।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070605575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4। सुनो दिल से।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
11: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 99393-65923।
12: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
13: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
12: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: Now pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी, बस स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: पूर्वी चंपारण बिहार के परराज बाबा सोमेश्वर नाथ से बोल रहा हूँ, जूना सा जी।
1: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: बढ़िया है, फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में हूँ।
1: तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: दूल्हा गंगा पार के गाना सुना दीजिए। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल भी अबे तोरे दुआरी भोलेनाथ।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
2: जी जी जी, फर्स्ट तो है रामविलास कुशवाहा जी कीर्तपुर बगहा से, वैसे धर्मेंद्र यादव जी और दिनेश साजी, उमेश साजी और भरत साजी, रवि कुमार साजी और रेडियो सुनने वाले सब साथी मेरे को सुना दूंगा।
1: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं संत रेडियो सबके साथ रेडियो 90.4 FM। प्रणाम।

0: जी बहुत
1: हेलो।
0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम।
0: क्या हाल चाल है?
1: अच्छा है, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। नाम बता दीजिए अपना।
1: ईशा कुमारी।
0: कहाँ से?
1: हम गोपाल नेटवर्क ऑफिस जो है वहीं से।
0: तो कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए, आज बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है।
1: ये लो बता, ये मेरा भाई बताएगा मैम।
0: जी दे दीजिए।
1: हेलो।
0: हाँ बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते।
1: एक मुझे गाना सुनना
0: बता दीजिए।
1: बवली में कोई हिंदी है?
0: हिंदी सॉन्ग है। गाने के और कुछ लाइन याद है? थोड़ा बहुत सुना दीजिए ना।
1: बगल में पैसा पैसा के करी लाखी
0: अच्छा तो आप बता दीजिए, मतलब मैं नहीं सुन पाऊंगी ना तो नहीं बजा पाऊंगी।
1: अच्छा ये बोल रहे हैं ना, बगल में पैसा पैसा के करी लाख, ये वाला गाना।
0: अच्छा और गाना किसी को सुनाना है?
1: सबसे पहले आपको, मेरे भाई बहन है, मम्मी है, और रेडियो टीवी में जितने भी दोस्त हैं उन सबको।
0: चलिए ठीक है, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
6: Now pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
6: Pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up.
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में।
7: नमस्ते
9: नमस्ते
7: जी, मैं प्रदीप सामी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
9: क्या हाल चाल है आपका?
7: ठीक है जी, अपना बताइए।
9: हमारा भी ठीक है।
7: मुझे एक सॉन्ग सुनना था।
9: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
7: ये दुल्हा गंगा पार का सॉन्ग सुनना है, टाइटल सॉन्ग।
9: अच्छा,
7: इतना बता दो ये दुल्हा गंगा पार के ये गंगा सॉन्ग सुनना।
9: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
7: जी, अंकुश कुमार और प्रिंस कुमार, रमरजीत सामी और जितने रेडियो में सुन रहे हैं सारे।
9: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।
7: थैंक यू मैम।
9: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगी 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: कैसी हैं मैम?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: जी हम भी अच्छे हैं। बारिश उधर हुआ है रातों?
1: बारिश तो पूरी रात हुई है।
0: हम लोगों भी यहाँ बारिश बहुत हुआ है, चारों तरफ सादा ही सादा दिख रहा है, पानी ही पानी।
1: चलिए, इसी का तो सबको तो बेसब्री से इंतजार।
0: मैम गाना सुनवा दीजिए, एक तो
1: बता दीजिए।
0: गाने का बोल है, बादल यू गरजता है, डर कुछ ऐसा लग रहा है।
1: और सॉन्ग किसी से डेडिकेट है?
0: डेडिकेट आप सुनिएगा, जितने रेडियो इंजिन रोता है सभी सुनेंगे।
1: ओके
0: मैम,
1: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजिन 90.4 FM। वेलकम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 92.4 FM में।
15: जी नमस्कार मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायार एम।
16: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
15: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम।
16: अच्छा, आज कौन सा सॉन्ग सुनना है?
15: आज सुनवा दीजिएगा ना कजरे की हार।
16: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
15: मैं रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहता।
16: ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 92.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 92.4 एफएम में।
0: जी नमस्ते, नमस्कार दिवस सोनी सिंह सर, कैसे हैं?
1: नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं तो आवेज मस्त मिलता है, थकास रहता हूँ, मैं रेडियो फैन मोहम्मद खान। ना बताइए सब क्या हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो गया?
1: ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, और आपका?
0: मेरा भी बहुत पहले हो गया है।
1: अच्छा,
0: और सर सुनाइए मौसम कैसा है अपने यहाँ का?
1: यहाँ का मौसम अभी ठीक है।
0: सुने की बारिश हो रही है?
1: हाँ, बारिश हो रहा है लेकिन कभी कभी, लेकिन मौसम ठंडा है।
0: यहाँ पे तो काफी गर्मी है दुबई में, 45 क्रॉस कर गया है, कभी कभी 50 भी चला जा रहा है। तो मुझे सॉन्ग सुना दीजिएगा गयवान मूवी के।
1: और सॉन्ग कौन सा है
0: आज के दिन के क्या रहा है?
1: अच्छा, तो चलिए
0: आपके साथ ये सुनाना चाहते हैं आपके साथ निशा भारती को, कार खातून सागुता फिर दोस्त और लिस्टनर को, और अनिल भाई को भी, छोटपुर वाला अनिल भाई, उनको भी सुनवा दीजिएगा।
1: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सब कुछ रेडियो रंजन 92.4।
0: थैंक यू।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: 2994-9-11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैडम।
2: जी नमस्ते।
1: हेलो।
2: हाँ जी
1: मैडम, मुझे गीत सुनना है।
2: जी नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते, से बोल रहा हूँ।
2: और कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: दिल्ली आने का डोला जो मार के लिए।
2: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: मैं भी हमारे श्रोता सुनेंगे, सभी लोगों के लिए रहेगा।
2: अच्छा, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगन 90.4 एफएम में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, मैं मोहम्मद अंसारी जयपुर से
1: जी,
0: और मैं कई बार लगा चुका हूँ और रिकॉर्ड करा भी चुका हूँ। मेरा सॉन्ग चलता नहीं है, क्या प्रॉब्लम है?
1: ऐसा तो नहीं है, सभी का कॉल इसलिए होता है, ऐसा थोड़ी है कि आपका फोन लग जाएगा।
0: ऐसा है कि मुझे गाना सुनना है, गाना खेसारी लाल की आवाज में चलवा दीजिएगा।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: ई प्यार काल परसों के भइल ना रहे।
1: एक बार और बोल दीजिएगा।
0: ई प्यार काल परसों के भइल ना रहे।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: सुनाना है सब दिन मामा है, अजरुद्दीन भाई है, और समीर भाई है, और सोहन भाई है, अजीम भाई है, सबको गाना है और ये गाना सुनना चाहते हैं सब हम।
1: जी बिल्कुल, प्ले करेंगे, प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा, सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे। Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: जी नमस्ते।
9: नमस्ते,
8: क्या हाल बा?
9: हमारे तो ठीक बार, वो बताइए अपन रोबा कैसे बानी?
8: ठीक बानी, भारती जी
9: ना
8: एक पहले तो ना तो नहीं
9: हूँ, बुधवार के दिन छुट्टी पे रहूँ।
8: अच्छा अच्छा, मनोरमा जी रहने दिन गाना सुना दी हमसे, ना भंगिया पिसाइए गणेश के पापा ना यहाँ जाता नहीं, ये गाना बाजी।
9: और ये गाना क्यों सुनाबो करे हम
8: पूरा, ये आदमी जुड़ल बस सब सुनी।
9: चलिए फिर ठीक बात है, गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।
8: जी हम पचपरा से बोला जी बोलते नहीं।
9: हाँ हाँ
8: जी नमस्ते।
9: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: मैं ज्योति साहू मधुसूदनगर से बोल रही हूँ।
0: जी कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: और क्या कर रही हैं अभी?
1: अभी हम खाना बना रहे हैं अभी।
0: अच्छा, नाश्ता हो गया है?
1: हाँ नाश्ता हो गया, खाना बना रहे हैं।
0: चलिए सब तो बढ़िया है। और गाना कौन सा सुनना है बता दीजिए।
1: गाना गाना वो सुनना चाहती हूँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: एक बार और बोल दीजिए।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: जी मेरे पति को।
0: अच्छा चलिए सब तो बढ़िया है। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
6: जी मैम, नमस्ते
1: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 90.4 एफएम में।
6: मैं आपको गाना सुनना है।
1: अच्छा, नाम बता दीजिए।
6: सुबह कांडे हाजीपुर से।
1: जी, तो कौन सा गाना सुनना है जी आपको?
6: मैम भरत तिवारी के एक गाने सुना दी।
1: कौन सा?
6: भरत तिवारी के कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए।
1: चलिए, और गाना किसी को सुनाना भी है?
6: मैम आप और अपने घर वालों को बजेगा मैम गाना
1: कल या फिर आज सुनने को मिलेगा
6: शाम में? सबका नाम क्या है?
1: मेरा नाम मेरा भारती है।
6: सोनू मैम नहीं
1: वो भी है। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस दीदी, हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, बरसात नहीं हो रही है अभी फिलहाल में, कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं।
0: अच्छा,
1: आपके आपके यहाँ पर कैसा मौसम है?
0: मेरे यहाँ अभी मौसम अभी ठीक है।
1: बरसात हुई है क्या आपके उधर?
0: हाँ हुआ था शाम के टाइम में थोड़ा सा।
1: नहीं इधर तो नहीं हुआ, कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं, अभी पानी गिरा नहीं अभी तक। खाना माना हो गया आपका?
0: जी मेरा हो गया, आपका हो गया?
1: नहीं अभी नहीं हुआ मेरा। जी
0: जी, कौन सा गाना सुनिएगा बता दीजिए।
1: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है आंटी नंबर वन।
0: और गाना कौन सा है?
1: गाना भी सुना दीजिए, आई है 1-2 की वारी।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: जी जी, सबसे पहले आपको और गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझा जी सुखभाषा से।
0: जी चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: धन्यवाद मैडम।
0: वेलकम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करें 87-894-18744।
12: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
13: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
14: Now pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up,
15: hello.
14: Pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up,
15: hello.
16: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं
17: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो
19: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 104 FM।
18: किस्मत बोल रहे हैं।
19: हाँ जी, कैसे हैं?
18: हाँ सब ठीक हुआ, तुम ठीक बोलो ना।
19: हाँ,
18: तो बारिश हो तो रहा आज तो नहीं क्या होता है, ठीक बात दिन है, ठंडा दिन बा ना।
19: हाँ आज दिन ठंडा बावे, अतनी बारिश नहीं क्या हो खता आज हो
18: बावे। जुम्मा है तो ठीक हो बाबू, सुना दियो कव्वाली बढ़िया।
19: अच्छा कौन सा कव्वाली सुने?
18: तू अपना मुँह से सुना दू, अच्छा होला।
19: चलिए ठीक बाबू, गाना प्ले करते नहीं, सुनते नहीं रेडियो रेंजन 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार
1: कुमार चिंतापुर।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, आप कैसे हैं मैडम?
0: हम भी ठीक हैं।
1: अच्छा, और बारिश हो रहा है गोपालगंज में?
0: नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है, हुआ था रात को, अभी ठीक है।
1: अच्छा, अभी मौसम सही हो रहा है ना?
0: मौसम अभी सही हो रहा है, ठंडा ठंडा रह रहा है अभी।
1: हम लोग का तो धान बोरिंग से रोपा गया था, बारिश हुआ, भगवान जी मेहरबान है एकदम।
0: चलिए कोई नहीं, दोबारा नहीं पटाना पड़ेगा।
1: हाँ, दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा।
0: हाँ हाँ,
1: और बताइए मैम, खाना वाना हो गया?
0: हाँ, मेरा तो हो गया, आप अभी तो हो गया क्या?
1: नहीं, हम लोग का 2 घंटा अभी टाइम है लंच होने में, अभी 11 बजे नाश्ता तो सुबह में करके आते हैं।
0: चलिए तब तो बढ़िया है, तो बताइए
1: हमको गाना, आज गाना खेसारी लाल का गाना सुनवाइएगा, नया सॉन्ग।
0: खेसारी लाल का नया सॉन्ग कौन सा?
1: वो वाला गाना नहीं है वो फलाली लगाइंदा जिसे करिए, अरे वो सब छोड़ दीजिए, कौन सिंह का सुनवा दीजिए, अब कबो जर भी खैला पर बे असर होला।
0: अच्छा,
1: यही कौन सिंह का सुनवा दीजिएगा, ठीक है? नया नया खेसारी लाल का है गाना, लेकिन हमको याद नहीं है ना।
0: कोई नहीं, अगली बार वो बता दीजिएगा, इस बार ये पवन सिंह का सॉन्ग बजा देंगे।
1: यही पवन सिंह के व्यवसाय सुनवा दीजिएगा।
0: जी जी जी। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं
0: जी,
1: और जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सबसे।
0: चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए के साथ रेडियो रंजन 91.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0

0: है बिना किसी झंझट के और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
2: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में।
6: जी हम जैन बनारस।
5: जी कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है।
5: क्या हो रहा है अभी?
6: गाड़िया में सब काम कर रहे हैं, पावर लूम।
5: तो बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है आप?
6: ये गाना है वो वाला, सारी दुनिया का जैसे एक है, उस तरह तू मेरी दिल रूपा एक है। कुमार सानू आवाज।
5: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
6: जी हम 10 लोग को सुनेंगे और अपने फैमिली के साथ सुनेंगे।
5: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रमजन 90.4 FM।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में।
0: जी मैं गांधीनगर से अजय पकवान बोल रहा हूँ।
1: जी क्या हालचाल है आपका?
0: जी बढ़िया है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: जी गाना सुनाइए हमको, सौदागर दिल ले ले दिन दे कर।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: सौदागर फिल्म का है, सौदागर दिल ले ले दिन दे कर।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट की है?
0: लड्डू सा है, व्यास सा है, राजेश सा है, साहिल जी है, इंतजार जी है, दीपक जी है, शंकर भाई है और रेडियो सुनने वाले सभी को।
1: तो चलिए फिर आपसे गाना शुरू करते हैं, सुनते रहिए सबको। कौन सी रेडियो रंगी? 94.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 8784918744।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
5: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
8: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9939365923।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
11: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: मैं बनूंगा।
13: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029994911 पे,
13: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
11: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमा जैट पर।
14: जरूर सुरेश होगा, आने दो उसे, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा।
15: हाय दीदी।
16: ऐसा लगता है दीदी, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई।
14: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा सुरेश होगा।
16: अरे सुरेश तो इसी घर का बच्चा है, कभी भी आ जाएगा, उसकी राह देखने का क्या मतलब?
14: तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्यों परेशान हूँ।
16: तुम जरा खुलकर बात करो तो समझ में आए ना।
14: वो गुप्ता जी है ना?
16: गुप्ता जी? कौन गुप्ता जी?
14: अरे वही तेरे जीजा जी के मित्र, उनकी एक लड़की है।
16: लो, गुप्ता जी के यहाँ एक लड़की हो जाने से तुम क्यों परेशान हो रही है?
14: अरे पूरी बात तो सुन।
16: अच्छा बताओ।
14: तेरे जीजा जी सुरेश की शादी गुप्ता जी की लड़की से करना चाहते हैं।
16: ये तो और भी अच्छी बात है।
14: ये क्या खाक अच्छी बात है, आज जब गुप्ता जी अपनी लड़की के साथ यहाँ आए तो वो कहीं गायब हो गया। बेचारे गुप्ता जी अपनी लड़की के साथ यहाँ 2 घंटे बैठे उसका इंतजार करते रहे।
16: अब समझ में आ रहा है।
14: क्या समझ में आ रहा है?
16: यही कि एक और प्रेम और दूसरी और जालिम समाज। ऐसी हालत में हीरो भागेगा नहीं तो और क्या करेगा?
14: बस तू तो अपनी हांकने लगा। और तू जानता है कि तेरे जीजा जी कितने जिद्दी हैं? उन्होंने ये तय कर रखा है कि सुरेश की शादी अगर किसी से होगी तो वो गुप्ता जी की लड़की से होगी।
16: ओ
14: देखो तो सही कौन आया है। कहाँ चला गया था? कम से कम बता कर तो जाकर।
12: माँ मुझे नहीं करनी है ये शादी।
14: नहीं करनी है शादी? ये बात तो अपने पिताजी से तो कह सकेगा ना।
12: यही तो मुसीबत है माँ, मेरी तो जुबान ही नहीं खुलती उनके आगे। ओ मामा जी आप कब आए?
16: बस ये समझ लो कि अभी आया।
15: वैसे बहुत अच्छे समय पर आया हूँ भांजे। अच्छा ये बता, गुप्ता जी की लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो किससे करना चाहता है?
12: वो मैं मामा जी वो
16: ऐसी बातें कम से कम माँ से तो छुपानी ही नहीं चाहिए।
14: हाँ हाँ बता दे बेटा, है कोई लड़की तेरी नजर में?
12: मैं माँ वो शादी करूंगा तो केवल सविता से ही करूंगा।
14: सविता?
16: कौन सविता?
12: वो मेरे दफ्तर में टाइपिस्ट है माँ।
16: क्या ट्विस्ट आया कहानी में?
14: मैं समझी नहीं।
16: और समझोगे भी नहीं दीदी। ये कहानी मेरी फिल्म से कितनी मिलती जुलती।
12: मामा जी ये कहानी नहीं हकीकत है।
16: मेरे लिए एक ही बात है बेटे।
12: माँ अगर मेरी शादी सविता से नहीं होगी तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगा।
16: तुम्हें अब कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भांजे, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी नैया पार लगा कर ही रहूंगा।
12: माँ पिताजी आ गए।
14: तू अंदर जा, तुझे देखते ही उनका पारा चढ़ जाएगा।
12: अच्छा माँ फिर तुम?
17: पिछले महीने ही तो तुम यहाँ से गए।
16: बस
17: फिर तो ना पड़े।
16: बस 2-4 दिन के लिए आया हूँ, काम होते ही चला जाऊँ।
17: अरे तुम जब भी कभी आते हो
18: 2-4 दिनों के लिए तो आते हो,
17: और जब तक 2-4 महीने नहीं बीत जाते तुम खिसकने का नाम नहीं लेते।
14: आप आते ही पड़ गए बेचारे के पीछे। कोई घर आए मेहमान से ऐसे पेश आते हैं?
17: मेहमान? कौन मेहमान? ये मेहमान है
16: जी।
17: अरे किसने बुलाया था इसको यहाँ? देखो चला आता है मुंह उठाए।
14: बस भी कीजिए बस, आपको तो जैसे मेरे घर वालों से बैर हो गया है।
17: देखो रुक्मणी, मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई बैर नहीं, परंतु अपने इस लाडले भाई से कहो कि अपना पागलपन अपने तक ही रखे।
16: जीजा जी जब तक इस कहानी को अंत तक न पहुँचा दूँ तब तक मैं इस घर से जाने वाला नहीं।
17: कहानी? कैसी कहानी? अरे रुक्मणी ये क्या बकवास कर रहा है, जरूर ये कोई शरारत करने वाला है। वो सुरेश कहाँ है?
14: वो अभी तक नहीं आया।
17: अरे झूठ क्यों बोलती हो, वो अंदर है मैं जानता हूँ, उसका स्कूटर बाहर खड़ा है।
12: जी जी जी पिताजी।
17: अरे कहाँ चला गया था तू? तुझसे कहा गया था ना कि तुझे गुप्ता जी की लड़की देखनी है।
16: जीजा जी इसने लड़की देख भी रखी है और पसंद भी कर रहे।
17: आए, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे सुरेश तू कुछ कहता क्यों नहीं?
14: सुनो सुनो, आप इतना गुस्सा करेंगे तो बेचारा का मुंह कैसे खुलेगा?
17: वीरेंद्र बकवास तो नहीं कर रहा है?
14: नहीं नहीं नहीं ये सच कह रहा है, सुरेश को एक लड़की पसंद है, उसका नाम सविता है।
17: आए?
14: उसके दफ्तर में टाइपिस्ट है।
17: अरे तुमको इतना सब पता था और तुमने मुझे नहीं बताया?
14: सुनो जी लड़का नौजवान है, अगर जबरदस्ती की गई तो वो कुछ कर बैठेगा।
17: मैं ऐसी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। सुरेश को समझा दो उसे कि वो शादी वहीं करेगा जहाँ मैं चाहूँगा।
16: जीजा जी अब आप इस बढ़ते हुए तूफान को नहीं रोक सकते, हर युग में इसी प्रकार समाज में प्रेम का गला घोटा जाता है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती
17: है। ये बात है तो सुन लो, अगर सुरेश अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो उसे लड़की वालों से दहेज में 1,00,000 रुपया नकद लाने होंगे।
16: 1,00,000 रुपए? ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है।
17: ये सब मैं नहीं जानता।
16: ठीक है अगर 1,00,000 रुपए आपको मिल जाएंगे तो क्या आप सविता को स्वीकार कर लेंगे?
17: अरे पहले 1,00,000 रुपए तो लाओ फिर बात करेंगे। वो रुक्मणी देखो मैं जरा अंदर आराम करने जा रहा हूँ, कोई आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ।
16: 1,00,000 रुपए?
14: अरे वीरेंद्र 1,00,000 रुपए कहाँ से लाओगे?
16: इसके बारे में बाद में सोचेंगे दीदी, पहले मुझे सुरेश से 2-1 प्रश्न करने हैं।
12: सुरेश? जी जी मामा जी।
16: ये बताओ सविता देखने में कैसी है?
12: मामा जी आप खुद देख लीजिएगा ना, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ।
19: ठीक, कहाँ तक पढ़ी है?
12: एम ए है।
19: गुड, रसोई का काम जानती है?
12: मामा जी बहुत ही अच्छे पकवान बनाती है, उसके हाथ के बने गाजर के हलवे का तो जवाब ही नहीं है मामा जी। पर मामा जी आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
15: अरे भांजे, यही तीन प्रश्न तो पूछे थे जीजा जी ने अपनी शादी से पहले। अच्छा ये बता, तो सविता को यहाँ ला सकता है?
12: क्यों नहीं मामा जी।
19: तो फिर जाओ, तुरंत उसे लेकर आओ।
12: ठीक है।
14: भाई बता कि 1,00,000 रुपए का प्रबंध कौन करेगा?
19: तुम। मैं? तुम करोगी दीदी।
14: मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं?
15: झूठ मत बोलो दीदी, क्या तुमने माँ को यह नहीं लिखा था कि जीजा जी की जायदाद के पैसे पूरे 2,00,000 आ गए हैं?
14: ना बाबा ना, उन पैसों को तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती। तेरे जीजा जी को अगर पता लग गया ना तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, अपने साथ तो मुझे भी पागल करके ही रहेगा।
15: अरे तुम कैसी माँ हो, अपने बेटे की खुशियों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? फिर सोचो दीदी, 1,00,000 रुपए कौन से घर से बाहर जा रहे हैं?
14: ये तो उन्हें जब पता चल जाएगा ना कि उनके साथ धोखा हुआ है
15: तो इससे क्या होगा?
14: कुछ नहीं होगा, तू तो मुझे इस घर से निकलवा के रहेगा।
15: दीदी अगर तुम अपने घर में बहू देखना चाहती हो तो तुम्हें ये सब सहन करना ही पड़ेगा। और फिर जीजा जी का गुस्सा है भी कितनी देर का, गर्म हुए बरसे और ठंडे पड़ गए।
14: ये तो ठीक है, पर ये पता चल जाने के बाद कि उनके साथ धोखा किया गया है वो फिर से अड़ गए तो?
15: यही पर तो मात खा रही हो तुम। अरे तुम अभी तक जीजा जी को समझ ही नहीं पाई हो कि वो कैसे आदमी है। अरे एक बार शादी के लिए हाँ करके ना नहीं करेंगे, चाहे उनके साथ कितना भी छल क्यों ना किया जाए।
19: दीदी तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ, वो नाटक किया करता है, उसके पास मेकअप का सामान है और मैं मेकअप लगा कर तुरंत वापस लौटता हूँ, और तुम पैसे तैयार रखना।
14: ठीक है।
12: सविता ये मेरी माँ है, चरण छुओ ना।
14: नमस्ते माँ जी। ये रहने दे बेटी, भगवान तुझे सदा खुश रखे।
12: मामा जी कहाँ है?
14: मेकअप करने गया है, आते ही होगा। सुरेश तू पहले क्यों नहीं लाया सविता को इस घर में?
12: हिम्मत नहीं हो रही थी माँ, और डर भी लग रहा था कि सविता आपको पसंद आएगी भी या नहीं।
14: अरे इतनी सुंदर लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा। लगता है वीरेंद्र आ गया है।
19: कैसा लग रहा हूँ दीदी?
14: ये क्या मेकअप कर रखा है, पूरे 60 साल का लग रहा है।
19: अरे देखा भांजे, तुम्हारे लिए क्या क्या स्वांग भरना पड़ रहा है।
15: अच्छा तो ये सविता है।
14: नमस्ते मामा जी।
19: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
12: ये मेकअप मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मामा जी।
15: भांजे ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं सविता का चचा जगमोहन बनकर जीजा जी से मिलूंगा और तुम्हारी शादी पक्की करवाऊंगा।
12: पैसे मामा जी वो?
15: भांजे तुम आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से क्या लाभ।
19: हाँ तो दीदी पैसे कहाँ हैं?
14: ये रहा ब्रीफकेस, पैसे इसमें रखे हैं।
19: और इस डिब्बे में क्या है?
14: गाजर का हलवा, आज सुबह ही बनाया था। सुरेश ने कहा कि थोड़ा साथ ले चलते हैं।
15: ये तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ तो दीदी जीजा जी से कहना सविता के अंकल जगमोहन उनसे मिलने आए हैं।
14: अच्छा मैं अभी बुलाती हूँ।
12: मामा जी यू आर ग्रेट।
19: नमस्ते शर्मा जी।
12: नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए
19: शर्मा जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे शर्मा जी मैं तो चाहता था कि सविता की शादी किसी अच्छे घराने में
12: जी,
19: हो
12: लेकिन क्या हमारा घराना?
19: नहीं ये बात नहीं है शर्मा जी, आपके घराने से अच्छा घराना मुझे और कहाँ मिलेगा। मैं तो ये कहने जा रहा था,
12: मैं तो भूल गया।
19: हाँ ये रहे आपके 1,00,000 रुपए।
12: आप सचमुच 1,00,000 ले रहे हैं?
19: शर्मा जी आप बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। आप देख लीजिए पूरे 1,00,000 है।
12: आप ही के पैसे? क्यों शर्मिंदा करते हैं आप?
19: जी नहीं शर्मा जी, पैसों के मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं करता और करना चाहिए भी नहीं।
12: तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
14: जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल पक्का समझिए साहब।
19: ये लीजिए तो मुंह मीठा कीजिए। सविता ने बताया।
18: गाजर का हलवा ऐसा बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा स्वादिष्ट है। आपको कैसे पता चला कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है?
20: अरे जीजा जी, आपकी ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपी है?
18: जीजा जी,
20: मेरा मतलब है शर्मा जी। शर्मा जी, अब आपको क्या बताऊं कि मेरे जीजा जी की शक्ल आपसे कितनी मिलती जुलती है। पर एक बात की कमी है
18: जी। वो क्या?
20: उनकी मूछ नहीं। अरे मूछ तो मर्दानगी की निशानी होती है। अब आप ही बताइए शर्मा जी, मूछों के बिना आदमी अकलमंद नजर आता है।
18: भाई मुझे इसका क्या पता, मेरी तो कोई मूछ नहीं।
20: इसीलिए तो कहता हूँ जीजा जी के आप
18: फिर वही जीजा जी। जगमोहन जी, आपकी पूछो क्या हो रहा है?
20: हुआ कुछ नहीं है, वो खांसता हूँ ना तो हिलने लगती है।
18: ये हिल नहीं रही है।
20: नहीं, ये हिल ही रही है।
18: नहीं नहीं नहीं, नहीं जगमोहन जी, ये हिल नहीं रही है, बल्कि आपके चेहरे पर से छूट रही है, छूट रही
20: नहीं
18: है।
20: जीजा जी, ये ऐसे ही हिलती है।
18: क्या ये आप ही कमाल करते हैं? ये देखिए, कितना नकली है। जरूर तुम कोई बैरू क्या हो? बताओ बताओ कौन हो तुम, वरना भी पुलिस को टेलीफोन करता।
20: जी पहले आप मेरी गर्दन तो छोड़िए।
18: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ये दाढ़ी भी तुम्हारी नकली ही रहोगी।
20: जी,
18: ये सब क्या क्या कर रहे हैं?
20: बस कुछ मत पूछिए, दो प्रेमियों को एक दूसरे से मिलाने के लिए ये सब नाटक करना पड़ा।
18: और जी, ये एक लाख
20: आप ही के हैं, दीदी ने दिए थे।
18: ओ, तो तुम भी इस नाटक में शामिल हो?
21: और क्या करती, आप तो अड़े हुए थे, इस समस्या को किसी न किसी प्रकार तो हल करना ही था।
18: अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सविता पसंद है?
21: हाँ, और नहीं
18: तो तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपा रखा था? अरे रुक्मणी, कभी मैंने तुम्हारी पसंद को ना पसंद किया है?
22: जीजा जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
18: हाँ साले जी, पक्का ही समझिए। अरे भाई, बहू के हाथ का बना गाजर का हलवा जो खाना है।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
6: प्रसाद क्लिनिक।
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम,
8: सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4। सुनो दिल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी जिले में मिल्क पाउडर संयंत्र और मत्स्य जीरा बैंक का उद्घाटन किया। प्रतिवर्ष 5 करोड़ मछली जीरा का होगा उत्पादन। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था को करेगी मजबूत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव दिनारा के योगिया गांव पहुंचे, मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। और फिडे विश्व एमएचओ रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में राज्य के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी जिले में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले मिल्क पाउडर संयंत्र और मत्स्य जीरा बैंक के उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ भी किया। एक रिपोर्ट।
1: सीतामढ़ी जिले के राघोपुर बखड़ी में मत्स्य बीज प्रक्षेत्र ब्रूड बैंक की शुरुआत हुई। इसके निर्माण में 10 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत आई है। यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य सरकार के सहयोग से विकसित की गई है। इसके निर्माण में भुवनेश्वर का सीफा और ICAR ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया है। 38 एकड़ में फैले इस क्षेत्र में 60 तालाब है। इस प्रक्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ स्पॉन उत्पादन होगा। इसमें जयंती रेहू, अमृत कतला और अमोर कार्प की प्रजातियां शामिल है। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुभाष चंद्र यादव का कहना है कि यह ब्रूड बैंक अंतर प्रजनन की समस्याओं को दूर कर राज्य को गुणवत्ता पूर्ण और रोग मुक्त मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसमें कतला, रोहू और अमूर कार्प जैसी प्रजातियां की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके साथ ही यह केंद्र राज्य की सभी हेचड़ियों को प्रमाणित बुरड और स्पॉन की आपूर्ति करेगा, जिससे सीतामढ़ी, शिवहर, चंपारण और मुजफ्फरपुर जिलों सहित पूरे राज्य के मत्स्य पालकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार।
0: इसके पूर्व श्री चौधरी पुनौरा धाम पहुंचे और मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही परिसर में चल रहे विकास और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर 2028 तक मंदिर का निर्माण पूरा कर मां जानकी को भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में मानव तस्करी को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। पटना के बापू सभागार में आयोजित मानव तस्करी विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौधरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि गुमशुदा बच्चों की तलाश और मानव तस्करी रोकने पर सरकार का पूरा ध्यान है।
2: एक एक महीने में लगभग 1200 से अधिक बच्चों की रिकवरी की जा रही है, तो इन चीजों को और बढ़ाने के हम जरूर इंश्योर करते हैं कि आपके सुझाव पर पूरी तरह बिहार सरकार काम करके बिहार के बच्चे और बिहार से जो गायब हुए लोग हैं उनको रिस्टोर करके उनको पुनर्वासित करने का भी काम लगातार करता रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
3: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
3: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर सत्र 2023-25 के छात्रों का दीक्षांत समारोह आज पटना विमेंस कॉलेज में आयोजित किया गया। समारोह के दौरान राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। इनमें 28 छात्राएं और 10 छात्र शामिल हैं, जबकि 1305 स्नातकोत्तर छात्रों और 155 पीएचडी शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थीं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की। श्री कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय तथा सहयोग के माध्यम से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और सशक्त बनाने का प्रयास होगा।
4: शिष्टाचार मुलाकात की और बिहार में जो हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हैं उनसे अवगत कराने आया हूँ कि हम लोग चाहे रेफरल के लिए जो कर रहे हैं या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा है पीपीवी मोड पे हम कुछ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं।
0: भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क होगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद के अनुसार व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक लेनदेन के लिए किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के योगिया गांव में पिछले दिनों हुई मजदूर चंदेश्वर चौधरी की हत्या के बाद आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। बाद में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए श्री यादव ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। उन्होंने मृतक के परिवार को भी सुरक्षा देने की मांग की। इस बीच रोहतास के पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि हत्या के मुख्य आरोपित अजीत तिवारी को गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का शव बरामद करने की कार्रवाई जारी है।
1: हत्या करने के बाद शव लेकर भाग रहे अजीत तिवारी को पीछा करके यूपी पुलिस की मदद गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसको अगर पूछताछ एवं कार्रवाई के लिए वहां से लाया जा रहा है और साथ ही सुरतापुर नहर के पास SDRF और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सबकी तलाश की जा रही है।
0: देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान की कल से शुरुआत हो रही है। वर्ष 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान यह अभियान शुरू हुआ था। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रेरणा का यह अवसर देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए।
2: इस बार देश वंदे मातरम के 150 वर्ष सम्मान के साथ में मना रहे, इसलिए हमने आग्रह किया है कि इस बार हम वंदे मातरम के गायन करते हुए उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करें। वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप में गायन करने के लिए कुछ लोगों को शब्दों की, उसके लिरिक्स को लेकर के, उसके धुन को लेकर के कुछ चुनौती हो सकती थी। हमने तकनीकी के रूप से इस तरह से फैसिलिटेट किया है कि लोग आसानी के साथ में उसके साथ कराओके को आनंद लेते हुए उसको गा सकते हैं और अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं।
0: इस अवसर पर प्रदेश भर में कल से विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत होगी जो 17 अगस्त तक चलेंगे। अभियान को लेकर शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद ने भी जिलावासियों से इसमें शामिल होने की अपील की है।
3: प्रिय जिलावासियों, हर घर तिरंगा अभियान 2026 दिनांक 9 अगस्त 2026 से 17 अगस्त 2026 तक इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक के घर, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपना श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट करने का है।
0: प्रदेश में मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कटिहार, बांका, भागलपुर और बक्सर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान जिले के सिसवन में सबसे अधिक 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में आयोजित फिडे विश्व एमेच्योर रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। रानी पूजा ने ब्लिट्ज वर्ग और रैपिड वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, जबकि ओपन रैपिड वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। इसके साथ ही साकेत कुमार ने ओपन ब्लिट्ज वर्ग में स्वर्ण पदक और ओपन रैपिड वर्ग में रजत पदक जीते। अमन कुमार ने ओपन अंडर 2000 के रैपिड वर्ग में रजत पदक पर कब्जा जमाया। पुणे में 12 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। कप्तान सपना कुमारी के नेतृत्व में 17 सदस्यीय दल आज पुणे के लिए रवाना हो रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शंकरण ने बताया कि इस चैंपियनशिप के लिए बिहार की महिला हॉकी टीम का चयन राजगीर खेल अकादमी में हुए चयन ट्रायल के आधार पर किया गया है। उन्होंने बताया कि टीम में 2 गोलकीपर, 6 डिफेंडर, 5 मिडफील्डर और 4 फॉरवर्ड शामिल हैं। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस ने श्री कृष्णा सेतु के पास वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 33 मवेशियों को जब्त किया। इस मामले में 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अररिया जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल को निगरानी विभाग ने 50,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार ये गिरफ्तारी 17 लाख की मशीन उपलब्ध कराने के लिए रिश्वत मांगने पर की गई। शिवहर जिले में गश्ती के दौरान पिपराही थाने की पुलिस जीप अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में वाहन चालक चौकीदार रामजी राय की मौत हो गई, जबकि दारोगा अशोक सिंह समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अररिया जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी विनोद दुल्हन ने स्वीकृत 31 आवेदकों के घर की छत पर 3 दिनों में सोलर पैनल स्थापित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी जिले में मिल्क पाउडर संयंत्र और मत्स्य जीरा बैंक का उद्घाटन किया। प्रतिवर्ष 5 करोड़ मछली जीरा का होगा उत्पादन। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था को करेगी मजबूत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव दिनारा के योगिया गांव पहुंचे, मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। और फिडे विश्व एमेच्योर रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में राज्य के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है वैशाली जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
1: वैशाली जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में 12 अगस्त को

0: रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम,
8: सुनो दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला कि ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
0: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम,
10: सुनो दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
7: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
3: रेडियो रिमझिम।
9: सुनो दिल से।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिन 90.4 आमजेड पर।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
6: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 916293-3538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
7: बोलबम हर हर महादेव।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल। दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रमझिम।
9: सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
12: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
13: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
14: उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी आमंत्रित करती है अतिरिक्त निदेशक पद के लिए आवेदन। भर्ती प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जानी है। योग्यता, अनुभव, बायोडाटा, प्रोफॉर्मा आदि के बारे में जानकारी के लिए देखिए उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी की वेबसाइट nepa.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर में ये रिक्तियां उपलब्ध हैं। सहायक नर्सिंग अधीक्षक 2 पद, बाल मनोचिकित्सक 1 पद, चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी और चिकित्सा अधिकारी यूनानी 1-1 पद, तथा मेडिकल फिजिसिस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन 1 पद और मेडिकल फिजिसिस्ट रेडियोथेरेपी तथा ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए 2 पद उपलब्ध हैं, जबकि मेडिकल फिजिसिस्ट रेडियोथेरेपी के लिए 1 पद उपलब्ध है। आप विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट aimsnagpur.edu.in। इसके अतिरिक्त यदि आप और विस्तार से जानकारी चाहें तो देख सकते हैं 8 अगस्त से 14 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, जनसंपर्क अधिकारी और सहायक प्रबंधक की रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in। govin. इसके अतिरिक्त आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.iepf.gov.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी हिमाचल प्रदेश आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परियोजना अभियंता और संपदा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, कनिष्ठ अधीक्षक तथा कनिष्ठ लाइब्रेरी सूचना सहायक। ऑनलाइन शुल्क भुगतान, पात्रता शर्तों और ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधी विवरण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसका पता है iitmandi.ac.in। कोस्ट गार्ड मुख्यालय, राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर, नई दिल्ली में ये रिक्तियां उपलब्ध हैं। सिविलियन स्टाफ अधिकारी, सिविलियन स्टाफ अधिकारी लॉजिस्टिक्स, अनुभाग अधिकारी, मुख्य ड्राफ्ट्समैन, निजी सहायक तथा सहायक। सिविलियन स्टाफ अधिकारी की नियुक्ति गोपालपुर ओडिशा में की जानी है, जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी लॉजिस्टिक्स की तैनाती होगी कोच्चि, श्री विजयपुरम और पोरबंदर में। अनुभाग अधिकारी कोच्चि, कवरत्ती, एनरोथ, ओखा, वादिनार और फेजरगंज में तैनात होंगे, जबकि मुख्य ड्राफ्ट्समैन तूतीकोरिन और रत्नागिरी में कार्यरत रहेंगे। निजी सहायक की नियुक्ति पोरबंदर, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम में होगी, जबकि सहायक पद के लिए नियुक्तियां होंगी चेन्नई, विशाखापत्तनम, कराईकल, मुंबई, बेपोर, मिनिकॉय, एंद्रोथ, विझिंजम, दमन, कारवार, श्री विजयपुरम, जखाऊ, पिपावाव और वादिनार में। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय कोस्ट गार्ड की वेबसाइट www.indiancoastguard.gov.in। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। सह प्रोफेसर औषधीय प्रबंधन, सहायक प्रोफेसर वित्त एवं लेखा, उपपंजीयक वित्त एवं लेखा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेजे जा सकते हैं इस वेबसाइट पर www.indiancoastguard.gov.in। इसी वेबसाइट पर आपको नियम और शर्तों संबंधी समग्र जानकारी विस्तार से प्राप्त हो जाएगी।
13: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
15: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
16: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
17: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
18: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
19: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
18: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
16: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
18: सुनिए सुनिए सुनिए,
20: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
18: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
20: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
18: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
21: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
22: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
21: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
22: बिल्कुल बिल्कुल माया क्लासिकल में पीडीएफ, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
0: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
1: रेडियो रिमझिम,
0: सुनो दिल से।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
11: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9939365923।
12: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
13: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
12: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
13: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
12: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
14: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
14: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
14: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
15: प्रसाद क्लिनिक,
16: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
15: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
16: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
17: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कोलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
18: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम

0: संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरातवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत के प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा। लेकिन अगर अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमरीका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हो। आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए। आपको कैंप

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: चुप हो जाना, चुप।
2: दिल मेरे तू दीवाना है।
1: लो छोटी मालिक का गीत गूंजा, अब ये चुप हो जाएगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बढ़तु।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: कहो साली जी, कहाँ की तैयारी बाहो?
2: रहो न जीजा, मैंने तैयार ना होके।
1: ओहो,

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: पूर्वी चंपारण बिहार के परराज बाबा सोमेश्वर नाथ से बोल रहा हूँ, झूना साजी।
1: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: बढ़िया है, फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में हूँ।
1: तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: दूल्हा गंगा पार के गाना सुना दीजिए। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल भी अबे तोरे दुआरी भोलेनाथ।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
2: जी जी जी, फर्स्ट तो है रामविलास कुशवाहा जी कीर्तपुर बगहा से, वैसे धर्मेंद्र यादव जी और दिनेश साजी, उमेश साजी और भरत साजी, रवि कुमार साजी और रेडियो सुनने वाले सब साथी को सुना दूंगा। प्रणाम।
1: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं संत रेडियो सबके साथ, रेडियो 90.4 FM। प्रणाम।

0: जी बहुत
1: हेलो।
0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम।
0: क्या हाल चाल है?
1: अच्छा है, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। नाम बता दीजिए अपना।
1: ईशा कुमारी।
0: कहाँ से?
1: हम गोपालगंज पोस्ट ऑफिस से है, वहीं पे।
0: तो कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए, आज बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है।
1: ये लो बता, ये मेरा भाई बताएगा मैम।
0: जी दे दीजिए।
1: हेलो।
0: हाँ बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते।
1: एक मुझे गाना सुनना
0: बता दीजिए।
1: बवली में पैसा, हिंदी
0: हिंदी सॉन्ग है। गाने के और कुछ लाइन याद है? थोड़ा बहुत सुना दीजिए ना।
1: बगली में पैसा, पैसा के करी लाख, अबे बिल्ली कैसे करो मेरे पर, छबरा है छबरा छबरा दिला के हम बोल। ये तो मेरा बोलता है मैं।
0: अच्छा तो आप बता दीजिए, मतलब मैं नहीं सुन पाऊंगी ना तो नहीं बजा पाऊंगी।
1: अच्छा ये बोल रहे हैं ना, बगली में पैसा पैसा के करी लाख, ये वाला गाना।
0: अच्छा और गाना किसी को सुनाना है?
1: सबसे पहले आपको, मेरे भाई के हम हैं, मम्मी है और रेडियो टीवी में जितने भी दोस्त हैं उन सबको।
0: चलिए ठीक है, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम।
5: नमस्ते
6: मैम। नमस्ते
5: जी, मैं प्रदीप सानी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
6: क्या हाल चाल है आपका?
5: ठीक है जी, अपना बताइए।
6: हमारा भी ठीक है।
5: मुझे एक सॉन्ग सुनना था।
6: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
5: ये जो ये दुल्हा गंगा पार का सॉन्ग सुनना है, टाइटल सॉन्ग।
6: अच्छा,
5: इतना बता दो ये दुल्हा गंगा पार के ये गाना सॉन्ग सुनना।
6: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
5: जी, अंकुश कुमार और प्रिंस कुमार और अमरजीत साहनी और जितने रेडियो में सुन रहे हैं सारे।
6: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: थैंक यू मैम।
6: वेलकम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: कैसी है मैम?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी हम भी अच्छे हैं। बारिश उधर हुआ है रातों?
0: बारिश तो पूरी रात हुई है।
1: हम लोगों को भी यहाँ बारिश बहुत हुआ है, चारों तरफ सादा ही सादा दिख रहा है, पानी ही पानी।
0: चलिए इसी का तो सब कोई को बेसब्री से इंतजार।
1: मैम गाना सुनवा दीजिए एक तो।
0: बता दीजिए।
1: गाने का बोल है, बादल यू गरजता है, डर कुछ ऐसा लग रहा है।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: डेडिकेट आप सुनिएगा, जितने रेडियो इंजिन होता है सभी सुनेंगे।
0: ओके
1: जी मैम,
0: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सभी का रेडियो इंजिन 90.4 एफएम। वेलकम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone ring, they watch the head, don't get the hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: जी नमस्कार मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम। मैं
6: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम।
6: तो आज कौन सा सॉन्ग सुनना है?
5: आज सुनवा दीजिएगा ना कजरे की हार।
6: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
5: मैं रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहता
6: हूँ। ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्ते नमस्कार दिवस होने से सब कैसे हैं?
0: नमस्ते मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं तो आवेज मस्त मिलता है थकास रहता हूँ। मैं रेडियो फैन मोहम्मद खान ना, बताइएगा सब क्या हो रहा है? ब्रेकफास्ट हो गया?
0: ब्रेकफास्ट हमारा हो गया। और आपका?
1: मेरा भी बहुत पहले हो गया है।
0: अच्छा,
1: और सब सुनाइए, मौसम कैसा है अपने यहाँ का?
0: यहाँ का मौसम अभी ठीक है।
1: सुने की बारिश हो रही है?
0: हाँ बारिश हो रहा है, लेकिन कभी कभी, लेकिन मौसम ठंडा
1: है। यहाँ पे तो काफी गर्मी है दुबई में, 45 क्रॉस कर गया है, कभी कभी 50 भी चला जा रहा है। तो मुझे सॉन्ग सुना दीजिएगा दयावान मूवी के।
0: और सॉन्ग कौन सा है
1: आज के दिन पे क्या रहा है?
0: अच्छा तो चलिए और
1: आपके साथ ये सुनाना चाहते आपके साथ निशा भारती को, कार खातून सागुस्ता फिर दोस्त और लिस्टनर को, और अनिल भाई को भी, छोटपुर वाले अनिल भाई, उनको भी सुनवा दीजिएगा।
0: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सब कुछ। थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: नमस्ते मैडम
6: जी। नमस्ते।
5: हेलो।
6: हाँ जी
5: मैडम, मुझे गीत सुनना है
6: जी। नाम बता दीजिए।
5: उमाशंकर से बोल रहा हूँ।
6: और कौन सा गीत सुनना है आपको?
5: दिल्ली आने का डोला जो मार के लिए।
6: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
5: मैं भी हमारे श्रोता सुनेंगे, सभी लोगों के लिए रहेगा।
6: अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी मैं मोहम्मद अंसारी जयपुर से
1: जी,
0: और मैं कई बार लगा चुका हूँ और रिकॉर्ड करा भी चुका हूँ। मेरा सॉन्ग चलता नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम है?
1: ऐसा तो नहीं है, सभी का कॉल प्ले होता है, ऐसा थोड़ी है कि आपका फोन नहीं लगाएगा।
0: ऐसा है कि मुझे गाना सुनना है, गाना खेसारी लाल की आवाज में चलवा दीजिएगा।
1: बता दीजिए कौन सा?
0: ई प्यार काल परसों के भइल ना रहे।
1: एक बार और बोल दीजिएगा।
0: ई प्यार काल परसों के भइल ना रहे।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: सुनाना है, सब दिन मामा है, अजरुद्दीन भाई है, और समीर भाई है, और सोहन भाई है, अजीम भाई है, सबको सुनाना है और ये गाना सुनना चाहते हैं सब हम।
1: जी बिल्कुल, प्ले करेंगे, प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी नमस्ते।
6: नमस्ते,
5: क्या हाल बा?
6: हमारे तो ठीक बार रुआ, बताइए अपन रुआ कैसे बानी?
5: ठीक बानी, भारती जी
6: ना?
5: एक ला पहले तो ना तो नहीं हूँ।
6: नहीं, बुधवार के दिन एचडी पे रहूँ।
5: अच्छा अच्छा, मनोरमा जी रहने वो दिन। तो गाना सुना दी हमसे, ना भंगिया पिसाइए गणेश के पापा ना यह जाता नो। ये गाना बाजी
6: और गाना क्यों के सुनाइबो करे हम?
5: हम सुना रेडियो पूरा ये आदमी जुड़ल बस सब सुनी।
6: जी चलिए फिर ठीक बात है, गाना प्ले करते नहीं सुना ट्रेन सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।
5: जी हम पचपरा से बोला जी बोलते नहीं।
6: हाँ हाँ
5: जी नमस्ते।
6: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
1: मैं ज्योति साहू मधुसूदन से बोल रही हूँ।
0: कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: और क्या कर रही हैं अभी?
1: अभी हम खाना बना रहे हैं अभी।
0: अच्छा, नाश्ता हो गया है?
1: हाँ, नाश्ता हो गया, खाना बना रहे हैं।
0: चलिए, सब तो बढ़िया है। और गाना कौन सा सुनना है बता दीजिए।
1: गाना वो सुनना चाहती हूँ मैं, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: एक बार और बोल दीजिए।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है? अच्छा,
1: जी मेरे पति को।
0: चलिए, तब तो बढ़िया है। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो।
3: हाँ जी मैम, नमस्ते।
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजी 90.4 FM में।
3: मैम आपको गाना सुनना है।
2: अच्छा, नाम बता दीजिए।
3: सुबह कानी हजियापुर ऐसी।
2: जी, तो कौन सा गाना सुनना है जी आपको?
3: मैम भरत तिवारी के गाना सुना दीजिए।
2: कौन सा?
3: भरत तिवारी के कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए।
2: चलिए, और गाना किसी को सुनाना भी है?
3: मैम आपको और अपने घर वालों को रेडियो परिवार को बजेगा मैम गाना
2: कल या फिर आज सुनने को मिलेगा
3: शाम में। सबका नाम क्या है?
2: मेरा नाम
3: हा?
2: मेरा भारती है।
3: सोनी मैम नहीं,
2: वो भी है। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस दीदी, हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, बरसात नहीं हो रही है अभी फिलहाल में, कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं।
0: अच्छा,
1: आपके आपके यहाँ पर कैसा मौसम है?
0: मेरे यहाँ अभी मौसम अभी ठीक है।
1: बरसात हुई है क्या आपके उधर?
0: हाँ हुआ था शाम के टाइम में थोड़ा सा।
1: नहीं इधर तो नहीं हुआ, कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं, अभी पानी गिरा नहीं अभी तक। खाना माना हो गया आपका?
0: जी मेरा हो गया, आपका हो गया?
1: अरे अभी नहीं हुआ मेरा। जी
0: जी, कौन सा गाना सुनिएगा बता दीजिए।
1: जी मैडम जी, पिक्चर नाम है आंटी नंबर वन।
0: और गाना कौन सा है?
1: गाना भी सुना दीजिए, आई है बंटी तिवारी।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: जी जी, सबसे पहले आपको और गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझाजी ककवासा से।
0: जी चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: धन्यवाद मैडम।
0: वेलकम।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki hindi bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94.4 FM।
6: किस्मत बोल रहे हैं।
5: हाँ जी, कैसे हैं आप?
6: हाँ, सब ठीक हुआ। तुम ठीक बोलो ना।
5: हाँ,
6: तो बारिश हो तो रहा आज तो नहीं क्या होता है? ठीक हुआ दिन, ठंडा दिन हुआ ना।
5: हाँ, आज दिन ठंडा बाबे अतनी बारिश नहीं क्या हो खता
6: अच्छा जुम्मा है तो ठीक हो बाबू। सुना दियो कव्वाली बढ़िया।
5: अच्छा, कौन सा कव्वाली सुने?
6: तू अपना मुँह से सुना दू, अच्छा होला।
5: चलिए ठीक बाबू,
6: ठीक
5: गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: ठीक।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार,
0: आप कुमार सिंहतापुर।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी ठीक हैं।
0: अच्छा, और बारिश वारिश हो रहा है गोपालगंज में?
1: नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है, हुआ था रात को, अभी ठीक है।
0: अच्छा, अभी मौसम सही हो रहा है ना?
1: मौसम अभी सही हो रहा है, ठंडा ठंडा रह रहा है अभी।
0: हम लोग का तो धान बोरिंग से रोपा गया, तब बारिश हुआ, भगवान जी मेहरबान है एकदम।
1: चलिए, कोई नहीं, दोबारा नहीं पटाना पड़ेगा।
0: हाँ, दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा।
1: हाँ हाँ
0: और बताइए मैम, खाना वाना हो गया?
1: हाँ, मेरा तो हो गया, आप अभी तो हो गया क्या?
0: नहीं, हम लोग का 2 घंटा अभी टाइम है लंच होने में, अभी 11 बजे। नाश्ता तो सुबह में करके आते हैं।
1: चलिए, तब तो बढ़िया है। तो
0: आज हमको गाना, आज गाना खेसारी लाल का गाना सुनवाइएगा, नया सॉन्ग।
1: खेसारी लाल का नया सॉन्ग कौन सा?
0: वो वाला गाना नहीं है वो लाली लगाइंदा जिसे करिए, अरे वो सब छोड़ दीजिए, कौन सी कम सुनवा दीजिए, अब कबो जहर भी खैला पर बे असर होला।
1: अच्छा,
0: यही कौन सिंह सुनवा दीजिएगा, ठीक है? नया खेसारी लाल का है गाना, लेकिन हमको याद नहीं है ना।
1: कोई नहीं, अगली बार वो बता दीजिएगा, इस बार ये पवन सिंह का सॉन्ग बजा दूंगी।
0: यही पवन सिंह के व्यवसायी सुनवा दीजिएगा।
1: जी जी
0: जी।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं
1: जी,
0: और जितना रेडियो रेंजन सुनने वाला है सबसे।
1: ओके,
0: हाँ
1: चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए के साथ रेडियो रेंजन 91.4 FM।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ghandi bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जी हम जैन बनारस।
6: जी कैसे हैं आप?
7: बढ़िया है।
6: क्या हो रहा है अभी?
7: साड़ियों में काम कर रहे हैं, पावर लूम।
6: तो बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है आप?
7: ये गाना है वो वाला, सारी दुनिया का जैसे एक है, उस तरह तू मेरी बिंदु एक है। कुमार सानू आवाज।
6: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
7: जी हम 10 लोग को सुनेंगे और अपने फैमिली के साथ सुनेंगे।
6: जी चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो न्यूजीलैंड 24 FM में।
0: जी मैं गांधीनगर से अजय पकवान बोल रहा हूँ।
1: जी क्या हालचाल है आपका?
0: जी बढ़िया है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: जी गाना सुनाइए हमको, सौदागर दिल ले ले दिल दे।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: सौदागर फिल्म का है, सौदागर दिल ले ले दिल दे।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट की है?
0: लड्डू शाह है, व्यासा है, राजेश शाह है, साहिल जी है, इंतजार जी है, दीपक जी है, शंकर भाई है और रेडियो सुनने वाले सभी को।
1: तो चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 24 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: एक 1 BHK, एक 2 BHK, एक में मैं रहूंगी और एक में जिम करूंगी। ओके दानू,
1: बहुत दही सोनावा के सेट चाहिए, पटाना में दूध को फल हट चाहिए।
2: अरे एक करे जा, तू जितना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खाती हम भागल ना होई, आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
3: हम संतोष पागल नहीं।

0: अरे एक करे जा, जितना तोहरा से रात में बात कोइले बनी न उतना केहू और खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ ली हो
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: बनाओ तर
1: अरे एक करे जा हम बरसिंगा खाली गर्जे वाला बादल ना होई आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लिह
2: हम संतोष पागल नहीं।

0: हुआ कि हम ग्रेड ए पोल नहीं पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी।
2: सारे गामा कारवा इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ।
3: बदन पे सितारे लपेटे हुए

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों
1: पर। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।